0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट्स फ्रॉम
0: मास्टर ज्वेलर्स, 93 हॉथम ग्रेंज रोड, ब्राडफोर्ड 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही

0: You're listening to
1: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.
2: Sallallahu Subhanallah, Sallallahu Subhanallah, Sallallahu.
3: Durood padhti hui ba khabar kahi khushbu. Durood padhti hui ba khabar kahi khushbu. Nazar jo aaya Madina, utar gayi khushbu. ख्याल था कि न जाने कहां से आए हुजूर, राहे हबीबे खुदा में बिखर गई।

बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूँ के इश्क़े रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर।

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 488 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
11: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मनिंगम सुपर स्टोर। मनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रैडफोर्ड 495555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मनिंगम सुपर स्टोर।
12: मनिंगम सुपर स्टोर,
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
15: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
16: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
17: You're listening to
18: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 Wetley Hill, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 0788542839। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414-260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दूल्हा।
1: 260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज, गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274 491।
10: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है। इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स, लिस्टर हिल्स साइंस पार्क, कैंपस रोड, ब्रेडफोर्ड, BD71HR।
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। सामीन, ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 Wetley Hill, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड।

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274488777।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑक लेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑक लेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
13: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
14: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
13: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
16: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
15: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
16: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
17: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
18: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
19: Listen on your PC or laptop. the best Asian music online.
20: You're listening to
21: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवथ लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटली हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
9: यू आर लिसनिंग टू
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज, गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274 056 014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hills Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
15: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
16: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
17: You're listening to
18: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज, गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 488 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
15: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
16: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
17: You're listening to
18: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्थ लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटली हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

صفح الرحمن

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सोलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज, गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सोलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
7: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
10: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मैनिंगम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
9: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
10: मैनिंगम सुपर स्टोर,
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
14: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
15: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवत लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
3: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
3: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
3: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: जलवा जाना दरअसल दीदार माशूक है। ये महज मजमुए हमदोनात नहीं, बल्कि मेरे एक जाती सफर का नाम है, जो सफर है खुद आगाही का। एक ऐसा जाती तजर्बा कि जिसमें मैंने अपने आप को दोबारा दरियाफ्त किया। ये एल्बम पाकिस्तान और दुनिया भर के लोगों के लिए मेरी एक अदना सी कोशिश है। इस एल्बम के लिए मीज़ान बैंक ने मेरे साथ तआवुन किया। मैं खुद को मीज़ान बैंक के साथ मुंसलिक करके फ़ख्र महसूस करता हूं, जो कि पाकिस्तान का पहला और सबसे मुकम्मल इस्लामिक बैंक है। अल्लाह हमें हिदायत दे और सच्चे तर्ज ज़िंदगी पर अमल करने, रिबा से दूर रहने की इस्तकामत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सोलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सोलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
7: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
15: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
16: Listen on your PC or laptop. the best Asian music online.
17: You're listening to
18: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवथ लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार, 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज, गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान,
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
15: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
16: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
17: You're listening to
18: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
19: Aqwam jahan mein hai raqabat to isi se, taskheer hai maqsood-e-tijarat to isi se, khali hai sadaqat se siyasat to isi se, kamzor ka ghar hota hai gharat to isi se, اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے، اس سے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے۔

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: ने बड़ा वास्ता दिया, बहुत बड़ा वास्ता मुझे दिया, मजबूरन मैंने उनसे वादा कर लिया, तो मैं पढ़ा हूँ। तीन शेर आप समाप्त कर लीजिए। शायर ने कहा, पंजाबी शायर ने, कहता है

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवथ लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार, 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3489। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड।

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid ul-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सोलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज, गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सोलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
7: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
14: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 Wetley Hill, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

जी बिल्कुल मौजूद सामईन इकराम, बाकायदा से ईद शो जिसे कहते हैं, खूबसूरत सा प्रोग्राम आपसे शेयर करते हैं। जी जनाब, हम बेखुद सोए हुए हैं और दुनिया और माफिया से बेखबर कि कल जो माशाल्लाह फैमिली के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऑल एक गेट टुगेदर, पूरी फुल फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आपको पता है ये जो बच्चे लोग होते हैं ना, ये बहुत खुशकिस्मत है, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशकिस्मत है वो फैमिलीज के, वाकई अकॉर्डिंगली उनके जैसे वो अरेंज्ड होता है प्रोग्राम तो चलते हैं, लेकिन बाज जो बच्चे हैं ना वो कहते हैं, मनमानी करते हैं कि नहीं जी हमारा प्रोग्राम है भाई, प्रोग्राम के अलावा क्वाइट तबीयत है जी, हम उसको फेस नहीं करना चाहते, हम ये नहीं बस जी लाडले ते लाडे हो रही की हुन कह सकने। तो फिर जी किसी को नींद आ रही है, वैसे मेरे है कितने दो की बात कर रही हूँ वो मुझे कह रहा मुझे नींद आ रही है, वो दूसरा कहता है मुझे ये है, तो चलो जी चले खैर, हम तो अपनी मुकद्दस मौजज फैमिली का हिस्सा बने जाके जी बिल्कुल। और माशाल्लाह यकीन करें कि ईद के पुरमसरत मौका पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैमिली से मिलने का कितना ज़ौक़ो शौक़ है कि मैं आपको ईद मुबारक कहना भूल गई। वो इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि मुसलसल जब से अल्हम्दुलिल्लाह ईदुल अधा का चांद मुबारक नज़र आया है, तो फिर हमने माशाल्लाह सबसे ईद इन एडवांस भी बोली, लेकिन अब लाइव यहाँ पे बैठ के आपके साथ खूबसूरत बातें करते हैं, अभी करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सबको हमारी रेडियो की टीम की तरफ से और आशा अख्तर की तरफ से ढेरों ढेर दिली ईद मुबारक, ईद उल अधा मुबारक। और हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ने इस दफ़ा भी कल जो है ईद का दिन भरपूर तरीके से गुजारा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि अल्लाह का करम फजल, अल्लाह पाक हम सबको ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे, अल्लाह ताला हम सब के घरों पर, बाल बच्चों पर, हम सब पर, नानियों दादियों तक अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे, सबको मुस्कुराने की अल्लाह ताला तौफीक भी दे। और कुछ वो जिसे कहते हैं कि दिल जले या दिल जलियाँ कहती हैं, अरे आप मुस्कुराती, अब मैं रहती तो नहीं कहूँगी, मैं कोई बेवकूफ़ तो नहीं होगी, मैं जी हर वक्त उन्हें हंसती रहनी, ऐसी कोई बात नहीं, आप मुस्कुराती बहुत है भाई, और अगर थोड़ा सा मुस्कुराती हूँ कोई खुदा न खास्ता आपके ऊपर कोई, अब वो मैंने लफ्ज़ पता नहीं यहाँ पे फिर आ जाएंगे हज़ारों गिले शिकवे के, भाई आपने ये लफ्ज़ बोला ही क्यों था, तो इसलिए मैं वो बोलती नहीं वरना मैं कह रही थी मैं कह ही देती हूँ आपके ऊपर, मैं कोई आइटम बम नहीं, कोई बॉम्ब नहीं फोड़ने वाली कि मैं वो फोड़ देती हूँ, एक मुस्कुराना ही तो होता है, अच्छे तरीके से मुस्कुराना, अच्छे तरीके से इखलाकियात भी कोई चीज़। और अगर ना मुस्कुराएं और ना हंस के बात करें तो कहते बड़ी प्राउड है, बड़ा ही मान आ अपने गुना दे उत्ते, बड़ा मान आ, गुनकारी बहुत पर है बड़ी प्राउड, हूँ असी कितने जाइए, फिर कोई ऐसे कहता है तो कोई वैसे कहता है, हमने कहा जैसे कहते हैं कहते रहें, हमें नहीं परवाह दुनिया की क्या करें, हम भी आसमां जी जब होती हैं हमारे साथ जर्मन से, वो फिर हम कहते हैं कि ठीक है भाई हम अच्छे तरीके से, फिर तो दिल की बातें आसमां से होती हैं, वो मुझे ऐसे हुआ, मुझे किसी ने ऐसे, वो साइकाइट्रिस्ट भी है माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोफेशनल वहाँ पे, वो खातून लड़की है यंग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मेरी फ्रेंड। खैर हम भी फिर दिल का गुबार निकाल लेते हैं इधर उधर अपनी फ्रेंड्स के साथ। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ईद के इस पुरमसरत मौका पर सवैयाँ भी चली, गोश्त भी चला, मीट भी चला, गोश्त अलहदा चला, मीट अलहदा चला, और साथ साथ फ्रूट्स भी चले, लेकिन ये नहीं बताऊंगी कि किस फ्रूट की क्या अहमियत है, और बस ये
बस गुन्नम गुन्ना जो है ना जो भी चलता रहा। हाँ, उससे याद आया मुझे, हमारे पाकिस्तान में एक डिश है कुन्ना, तो वो तो खैर शादी ब्याहों पे चलता है, लेकिन हमारी भी जो माशाल्लाह सिस्टर इन लॉज है ना हमारी फैमिली में, माशाल्लाह हमारे फैमिली मेम्बर्स, वो कहते हैं आज हमने सारी डिशेस ट्राई करनी है। खैर, बुने हुए गोश्त से लेके बुने हुए मी और कोरमा मीट से लेके, खैर क्या क्या मैं सुनाऊँ अब दास्तान। आप कहेंगे कि वो कहते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े, यानी प्रोग्राम शुरू होते ही बस बातें शुरू हो गई। तो आइए आपको इंजॉयमेंट और रिफ्रेशमेंट के मौके भी फराहम करते हैं। आज मैंने भी सोचा ईद की निस्बत से कुछ मिले जुले तासरात जो है, और जैसे जैसे मुझे एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ भी हुए उनके साथ चलते चलते आपके साथ खूबसूरत जो है माहौल एक पैदा करें। और होपफुली अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि कोई ऐसा मैद करती, मैंने कहा भाई मैं तो अपनी रो में अच्छे अच्छे ही अल्फाज का चुनाव करती हूँ, कहीं कोई बड़ा ये जो है ना बड़ी आप पता चला बड़ी एहतियात का काम है यहाँ पे बैठ के बोलना तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी कोई बात नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है, अल्लाह का फजलो करम है। बड़े बोल नहीं बोलती लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह देखिए सेंसिबल रहना भी हमें आता है और थोड़ा सा चहकना महकना भी आता है, फिर ईद का मौका हो तो फिर थोड़ा बहुत तो नमकीन के साथ मीठा और मीठे के साथ नमकीन तो चलता ही है, क्या ख्याल है। अरे ये तो नॉर्मल रूटीन में चलता है, लेकिन स्पाइस्ड खाना वो फिर फरमाइश आ जाती है फैमिली की, आज स्पाइसी होना चाहिए ज़रा हट के। तो मैंने भी कहा आज ईद का दिन है, ज़रा तड़का शड़का लगाते हैं म्यूज़िक सॉन्ग्स का अच्छी तरह हट के। आइए मैंने कहा थोड़ा सा ये हट के एक सॉन्ग लगाएं, तो आइए सुनते हैं आपको कैसा लगता है।

जी बिल्कुल मोज़ सामईन इकरामी दुलदहा के पुरमसरत मौका पर ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर बहुत ही खूबसूरत हमेशा की तरह जो हम आपकी क्या कहते हैं तफरीह तबा का ख्याल रखने के साथ साथ जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं उनको पेश करते हैं अपने चैनल प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर। जी बिल्कुल, आप भी आयशा अख्तर आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम ईद उल अधा की निस्बत से लेकर आई हैं। हमारी वेबसाइट bradfordnationradio.co.uk है जी। स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है। एक दफ़ा फिर दिल की अथाह गहराइयों से आप सब मेरे मौजूद सामईन इकराम दुनिया के जहाँ कहीं कोने में मौजूद है सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, खैर मुबारक आपकी तरफ से मैं कह देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्वियसली आप भी मुझे यही कहेंगे कि ईद मुबारक मुबारक मुबारक। तो ये मुबारकबादियाँ जो हैं अल्लाह के फजल व करम से मैं जहन पे ज़रा थोड़ा सा ज़ोर, वैसे हम भी ज़रा थोड़ा सा जहन पे ज़ोर दे ही लेते हैं। तो जी बिल्कुल, सोच रही थी कि अल्लाह करीम का ढेरों ढेर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला को खुश, जो हमारी ज़िंदगी का मकसद है, ज़िंदगी का मकसद है अल्लाह पाक को खुशनुदी, अल्लाह पाक की खुशनुदी, और फिर अल्लाह ताला हमें इतने इनामात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक से आगे दुआ ये कि अल्लाह ताला जो हमारी औलाद है, औलादें हैं, अल्लाह ताला इनको नेक और सालेहा बनाए और इनमें ये तमाम जो हमारे इतने खूबसूरत जिसे कहते हैं कि मजहबी पैकेजेस हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना अल्हम्दुलिल्लाह जो नवाज़ा, उसके करम के, फ़ज़ल के, रहमतों के सिलसिले हैं हमारी आल औलाद में सरात कर जाएं हम सब में, और हम इंशाल्लाह ताला अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत नहज पर यूं ही चलाते भी रहें और मज़ीद चलाएं, अपने रिश्तों की मजबूती और जो ईद उल अधा का पैगाम है जो कि मैं जब से ये माशाल्लाह शुरू हुआ है महीना अल्हम्दुलिल्लाह जितना मुझे मौका मिला गया प्रोग्राम्स की शक्ल में, मैंने आपसे हमेशा सब बातें शेयर की। आज तो फिर इतना मुकद्दस और खूबसूरत दिन है, प्यारा दिन है, एहतराम वाला भी दिन है और दिल में खुशियाँ फूट रही हैं, जज्बात जो है बड़े नेक अल्हम्दुलिल्लाह कि पूरी जो फैमिलीज जहाँ कहीं कोई, मैंने बताया ना कि कोई ज़बरदस्ती के रिश्ते जिसे कहते हैं, यकीन करें कि इस सुहाने मौका पर वो भी खूबसूरत हो जाते हैं। दिल चाहता है कि बस इन खूबसूरत रिश्तों का तसलसल यूं ही कायम रहे और मेन मकसद जो है इसका कुर्बानी का कि हम एक तरफ तो ठीक है सारे गरीबों यतीमों मसाकीन का ख्याल रखते हैं, साथ साथ ये मौका जो होता है अपनी फैमिली गेट टुगेदर का होता है कि रूठे हुओं को मना लेना और जो हमारे दोस्त अहबाब हैं इर्द गिर्द के और जितने भी खूबसूरत रिश्ते हैं इन, और फिर बच्चों को स्पेशली हमने उनका जो जहन है उसमें बताना है कि ये कितने मुकद्दस हमारे ऊपर फ़राइज के साथ साथ इखलाकियात भी हैं। तो ये सारा कुछ जो है बहुत ही खूबसूरत ईद के पुरमसरत मौका पर अल्हम्दुलिल्लाह चलता है। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत ईद उल अधा की नस्बत से खूबसूरत सा एक सॉन्ग है, आइए ज़रा सुनते हैं ये कैसा है।

जी मौजूद सामने कराम, इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं एक और ईद मुबारक का खूबसूरत सा नगमा सुन लेते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ईद के इस पुरमुसरत मौका पर ईद के नगमात को सुनना और गुनगुनाना। तो आइए खूबसूरत सा और सॉन्ग।

0: तो पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
1: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
0: अरे पगली अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
1: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD88NG फोन 01274-477-257। दुबई ज्वेलर्स।
2: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
0: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
3: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मैनिंगम स्टोर रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल फ्रूट सलाल मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
0: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX ऑन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश
3: मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885-428-349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।
1: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
0: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
0: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
0: 07548-419-678।
1: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है।
5: You're listening to
6: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
7: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
0: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
7: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
0: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
7: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
8: जी बिल्कुल मौजूद सामईन इकराम ब्रॉडफोर्ड एशियन रेडियो 14:13 AM पर ईद उल अधा का बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं सुहाना मंजर दिलकशी करते करते प्रोग्राम भी हम इन दिलकशियों की नज़र कर रहे हैं, पूरा ख्याल कर रहे हैं कि ये एक हमारा मजहबी फरीज़ा भी है बल्कि मज़हबी फरीज़ा ही है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी इन्हीं हदूदो कयूद में रहते हुए हमने अपने लिए खुशियों के सामान जो हैं ढूंढने हैं ख़रीदने हैं। ढूंढने कैसे हैं और ख़रीदने कैसे हैं आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। और समटाइम्स खुशियां जो हैं वो तलाश की जाती हैं और फिर ढूंढी जाती हैं और कुछ टाइम बाज़ औक़ात हमें ख़रीदने का मतलब ये है कि जब हम ख़रीदो फ़रोख्त में एक दूसरे के साथ जो है ममदो मावन साबित होते तो इसी तरह से रिश्तेदारियां और अपने से जुड़े हुए स्पेशली सिलाई रहमी के जो रिश्ते हैं उनको देखना होता है, उनकी आपस में हम खुशी के लिए अपने नफसानी ख्वाहिशात जिसे कहते हैं और अपने अंदर क्या गुस्सा कदूरत नफ़रत कीना परवरी बुग्ज हसद अनाद ये सब कुछ निकाल के हम ईद उल अधा हो या ईद उल फितर, सारी दोनों ईदों के ऊपर और फिर ईद जो हमारी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब बड़ी ईदों से बड़ी ईद ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब कुछ जो है ये क्या ख्याल है कि तजारत करते हैं, खूबसूरत तजारत कि जिसमें हम नफ़ा किस चीज़ का कमाते हैं, नेकियों का। तो जी बिल्कुल, हमने नेकियों के नफ़ा के ऊपर नज़र रखनी है और किसी सूरत भी ये नेकियों का सिलसिला जो है इसको हाथ से जाने नहीं देना, और ये खूबसूरत तरीन जो दिन है इनमें अगर हमें नेकियां करने का मज़े सामईन इकराम मौका मिल जाए तो यकीन करें कि तबीयत को जो सरूर मिलता ही है और इसके साथ साथ हमारे सारे रिश्ते जो हैं वो एक सुकून की लहर में आ जाते हैं, सुकून की जद में आ जाना, तो ये तो सबसे ही बड़ी बात होती है। कौन कौन से इस वक्त मनाजर हैं, कुर्बानी के जानवर जो हैं, वो एक कहावत है ना कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी है, तो लेकिन अब कुर्बानी के जानवरों में जो माशाल्लाह इसे फजीलत हासिल है, कुर्बानी नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उनसे जो माशाल्लाह हमें सुन्नत पाक मिलती है ऊँट की कुर्बानी की, तो वो देखा जाए तो माशाल्लाह जोशो खरोश पर है। बच्चे लोग जो हैं बड़े खूबसूरती से, और देखें बड़े बड़े बैल जो हैं, दुम्बे बकरे वो क्या कहते हैं कि ज़बह किए जा रहे हैं, और हर वक्त हर तरफ हर समत यूँ महसूस हो रहा है कि हम सुन्नत इब्राहिमी जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वो अदा कर रहे हैं, खुशी हमारे अंग अंग से फूट रही है, और जिसे कहते हैं ना कि चेहरों से स्पेशली हमारी चेहरे का वो जो हर हमारा अंग कह लें कि चेहरे की ताजगी तबस्सुम जो है वो इन खुशी के मौका पर, इस खुशी के मौका पर दीदनी है। चाहे जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही है, जो भी कुछ हो रहा है कि मौसम ने जो अपने भाई मौसम के तेवर, तो फिर भाई इस नेचुरल ये तो है, तो उसको एक साइड पे रखते हुए बस अपनी धुन में लगे हुए सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अदा करने में नेकियां, और क्यों ना हमारे चेहरों से तमाजत जिसे कहते हैं वो झलके, हम अल्लाह पाक की खुशी के लिए कर रहे हैं सब कुछ। और हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे बच्चे जो हैं वो बिलखसूस जब इस खूबसूरत मौका के ऊपर देखते हैं कि ये तो चाहे दुनिया के हम किसी कोने में, चाहे जिस मर्जी यूरोपियन कंट्रीज़ हों या जहाँ कहीं भी हों, हमारी जो हदूदो कयूद हैं उनका हमने पासदारी भी करनी है, उनकी लिमिट्स में रहते हुए अपनी खुशियां तलाश करनी, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव हैंड बनना है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लगी हुई हैं नीडी पीपल को जो मीट है वो फ्राहम करने में, कि इतनी गर्मी में एहतियात से उन गरीब गुरबा तक, गरीब गुरबा ममालिक भी कह लें, उन तक पहुँचा दिया जाए कि इस मौका पर तो गरीब भी पेट भर कर जो है वो अच्छे यानी मीट वाले खाने से जो है अपने आप को खुशी और राहत में पहुंचा सके। तो जी बिल्कुल मौज़ सामईन इकराम, खुशियों के इस मौका पर हम जो खुशियां जहां से फूटती हैं, जो खुशियों का गहवारा है, जो हमारा कुर्बानी ईद कुर्बान का मकसद है, और ये सारा जो एक इस वक्त मेरे पास कलाम है ईद मुबारक के मौका पर, बहुत ही खूबसूरत सा कलाम, और फिर इसमें हमारे जो मज़हबी माशाल्लाह खूबसूरत तरीन हस्तियां जो हैं उनका ज़िक्र भी है, और एक मुकम्मल मैं कहूँगी कि मेरे पास ये एक कलाम मेरे सामने है, तो आइए सुनने की ये कलाम जो है वो सआदत हासिल करते हैं, बहुत खूबसूरत कलाम है, और ये हमारी सआदत कह लें कि खुशनसीबी कि हम ये इतना खूबसूरत عید کے اس پرمسرت موقع پر، بالخصوص عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر یہ خوبصورت کلام جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ خوبصورت عید کے اس پرمسرت موقع پر، بالخصوص عید الاضحیٰ کے پرمسرت موقع پر یہ خوبصورت کلام جو ہے وہ سماعت فرما رہے ہیں۔

जी बिल्कुल मौजूद सामईन इकराम, ब्रफरेशन रेडियो 1430 AM पर ईद उल अधा का खूबसूरत तरीन, मैं जिसे कहती हूँ पैकेज, जो है तरतीब क्या देना भाई, तरतीब दे रहे हैं कि इतने खूबसूरत ईद उल अधा के मेरे सामने कलाम भी कह सकते हैं और सॉन्ग्स भी, और एक्साइटमेंट जो बच्चों की है स्पेशली वो दीदनी है, बिल्कुल मेरे सामने है जी। बहुत ही खूबसूरत आज का ये प्रोग्राम, और आप यकीन करें बड़े खुशकिस्मत होते हैं हम सब वो लोग जो इस सुहाने मौके को कैच कर लेते हैं, इन खूबसूरत लम्हों को कैद, वो क्या कहते हैं, वक्त को तो हम कैद नहीं कर सकते।

0: जी मौजूद सामईन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर ईद उल अधा की खूबसूरत, मैं तो इसे खूबसूरत तरीन ही एक नशियात कहूँगी कि अपनी देखें रीति रिवाज के साथ साथ हम जो हमारी मजहबी इकदार हैं हम उनको निभा रहे हैं। खुशियों का समा है माशाल्लाह इस ईद मुसर्रत के पुर मुसर्रत मौका पर जो है वो ईद कुर्बान तो हम मना रहे हैं, साथ साथ मिठाइयां हैं, फल फ्रूट हर किस्म का और साथ फल और फ्रूट इस खुशी के मौके पर दोनों अल्फाज एक दूसरे के साथ हमने जोड़ दिए हैं। खुशियों के मौके पर चलता है ऐसा जी, फ्रूट भी चलता है फल भी चलते हैं, ठीक है ना। तो गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर क्या हुआ, दोनों अल्फाज हैं, एक दूसरी ज़बान में है, एक अपनी ज़बान में है, एक देसी में है, एक इंग्लिश में है, तो चलने देना चलता है। लेकिन ख्याल बहुत रखना है सेहत का कि खाने में हमने पेट भर कर उतना ही खाना है जितना मौसम भी इजाज़त दे रहा है, हमारा पेट इजाज़त दे रहा है। बेशक बहुत अनवाओ अकसाम के खाने हैं हमारे सामने, फ्रूट अनवाओ अकसाम के हैं, लेकिन पेट तो सियाने कहते हैं अपना है ना भई, यकीन करें। और अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत एहतियात से चलती हूँ, वरना मेरी तबीयत का तो मैं अगर कोई बचपन का एक वाक्या सुना दूँ तो आप लोग जो है ना क्या कहेंगे कि बस हंसी नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। मैं हमेशा मैं देख रही हूँ कि ये क्या सिलसिला चल रहा है आज ब्रेक का, तो मुझे बहुत अलर्ट रहना है टाइमिंग के ऊपर। तो मेरे पास सॉन्ग भी बहुत खूबसूरत है, तो एक छोटा सा बचपन का किस्सा कि मैं वैसे बच्चे होते हैं लोग तो, लेकिन वो घर में जो पकवान पकते हैं तो वो इतने जी शुरू से तबीयत नाजुक, तो वो कहाँ हम हज़म कर पाते कि वो कैमल का गोश्त हो काऊ का हो, तो लेकिन वो एक स्पेशल वहाँ पे पाकिस्तान में तो पता नहीं यहाँ पे भी होता होगा कोई स्टाइल है उसको कैसे वो बनाते हैं ना, या स्टीम्ड होता है मे बी कि ज़्यादा वो गला हुआ नहीं था या क्या था, बहरहाल बस वो खाने की देर थी तो बच्ची तो निडाल लोट पोट के बस मेरे स्टमक एक शुरू हो गया है, तो वो रोते रोते पूछा बड़े भाई साहब ने कि जी पुत्र क्या बात है, तो बस जी वो मेरे जो बोटी है वो यहाँ फंस गई है तो वो कहते हैं कि अब पहली दफ़ा हमने सुना है कि बोटी भी जाके जो है कहीं फंसती है पेट में, तो मैं बकायदा स्टमक के ऊपर हाथ रख के नहीं वो यहाँ फंसी हुई है, वो निकलती नहीं है, वो आगे भी नहीं जाती है, तो वो सारा वो बचपन का एक किस्सा मशहूर हो जाता है कि जी इसको ना प्लीज़ बड़ा जो बड़ा इसको गोश्त बोलते मीट जो है वो नहीं देना कि वरना इसके बोटी फंस जाएगी और हमसे निकालनी मुश्किल हो जाएगी। खैर फिर पता ही है कि डॉक्टर्स जो हैं वो किस लिए हैं, किस मर्ज की दुआएं, तो खैर वो सारा सिलसिला चला जी चलता है। तो खैर हमें ब्रेक का बहुत ख्याल रखना है और मैं देख रही हूँ वो सिलसिला इधर किया हुआ मेरा ख्याल ब्रेक का इस बटन के ऊपर, तो फिर मैं ज़रा थोड़ा और दीदा दिलेरी से यहाँ पे बैठूँ। तो खैर वो ये जी सिलसिला कितना खाना है कितनी मकदार में हमारे हज़म कर सकते हैं, सेहत के लिए अच्छा है, बच्चों के लिए, सबका ख्याल रखना इर्द गिर्द के माहौल का, और दूसरे गर्मी में तो फिर यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अच्छा मौसम हुआ हुआ है ब्रैडफोर्ड का भी, तो इसका भी ख्याल रखना है। और बैक होम कंट्रीज़ में हमारे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी के में जो है मैं तो प्रिफर ही नहीं करती हूँ एसी वगैरह को, लेकिन अगर चलाते हैं अब यहाँ पे मेरी कोई कहीं भाई मैंने कोई गलत तो नहीं कह दिया कि आपने ऐसा, मैं अपनी तबीयत के लिहाज से कहती हूँ कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ इतनी कूलिंग जो होती है आर्टिफिशियल इसे कह लें, तो तबीयत जी शुरू से मेरी मुझे ऐसी अच्छी लगती है कि नेचुरल फिज़ा में रहना। तो खैर जिन लोगों लोग वो यूज़ कर रहे हैं उनके लिए सूटेबल है, वो करते हैं, उनकी तबीयत बर्दाश्त करती है, फिर भी एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है।
1: महफूज गैर सेहतमंद तो
0: बिल्कुल जी ब्रेक
1: दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड BD7 1HR 01274488877।
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी। बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
3: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे
3: बालियां अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
3: आज ही मामू काके की दुकान
2: खालिस सोने की पहचान।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
3: आपकी शान
2: हमारी आन,
3: क्वालिटी की पहचान।
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स 1 Duckworth Lane Bradford BD95ER 01274491442।
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
4: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 Wetley Lane Bradford
3: 01274201679। UK। सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
5: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स 1 Oak Lane BD9 4QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
9: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
0: जी बिल्कुल जी, ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM है, आयशा अख्तर के संग आप ईद उल अधा का खूबसूरत सा प्रोग्राम जो है समाप्त फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk, स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। अगर हमारी आवाज़ जो है रेडियो के संग संग आपकी समातों में बहुत ही खूबसूरत किस्म के मुतरन्नम, जिसे कहते हैं गीत गुनगुना रही है और ईद के इस पुरमसरत मौका पर एक खूबसूरत तरीन जिसे कहते हैं पैकेज जो है आप समात फरमा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, डाब के ऊपर आपका आशा अख्तर का प्रोग्राम चल रहा है, काम भी बहुत ज़्यादा अफराद जो है वो काम पे वापस जा चुके हैं, एक दिन की बस छुट्टी मिली ईद की और कामों में मसरूफ़, साथ साथ हमारा प्रोग्राम जो है आपके कानों में रस घोल रहा है। और यकीन करें आपने वैसे स्मार्टफोन के ऊपर, जो कि मेरा ऑब्वियसली हमेशा हम लोग बाहर अंदर जाने वाली ख़वातीन के बाहर काम लगे हुए हैं, घर के शॉपिंग दिस एंड दैट, तो फिर आराम से और स्पेशली किचन में हम ख़वातीन जो होती, तो मैं तो किचन में बैठी अपना कोई काम कर रही हूँ, साथ साथ ये प्रोग्राम्स वगैरह इंजॉय कर रही होती हूँ, बैठी हुई हूँ लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, साथ साथ प्रोग्राम चल रहा है। तो यकीन करें कि ईद के इस पुरमसरत मौका पर आपकी खुशियों के लिए हमने जो है स्पेशल, मैंने बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे खूबसूरत दिलकश कुछ गीत भी लिए हैं और कोशिश कर रही हूँ कि थोड़े से डेली रूटीन मैटर और डेली रूटीन लाइफ से थोड़ा सा जो रूटीन लाइफ होती है हम भी उसमें सुनते हैं, तो थोड़े से हटके स्पाइसी से सॉन्ग जो हैं वो हम शामिल कर रहे हैं। अब स्पाइस्ड जो सॉन्ग्स हैं वो क्या हैं, हर किसी की अपनी जो है वो राय है, हर किसी की अपनी एक मेंटालिटी जिसे कहें कि उस कैटेगरी और एंगल के ऊपर जो होती है फिट होती है, लेकिन मैं इस वक्त इस सेंस को इस और इन अल्फाज को इस कैटेगरी में ले रही हूँ कि ये पहले जो सॉन्ग हैं ज़्यादा ना चले हों और इस मौका पर यूनिक स्टाइल अपनाते हुए एक खूबसूरत मध्यम कह लें और यूनिक होने के साथ साथ मुतरन्नम और ज़रा हट के थोड़े से सॉन्ग्स जो हैं, जो कि मैं कभी कभी मेरा मूड होता है ना कि बस ये क्या है ये सारा कुछ, सब हर किसी की चॉइस है, अभी मैं किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर समथिंग स्पेशल एंड यूनिक मूड होता है कि बस सुनने का। तो वैसे यकीन करें मुझे ये जो गाने हैं आप फिर सब ये मसला आ जाता है, ओ अच्छा जी आप गाने भी सुनती, अच्छा चलें जी छोड़ें सारी बातों को, आप इस सॉन्ग से वाकई लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, थोड़ा सा हट के बहुत नाइस है, आइए सुनते हैं।

जी मौजूद सामिन इकराम, ब्रेफ रेशन रेडियो 1413 AM पर आपको ईद उल अदहा के खूबसूरत और सुहाने मौका पर ये नशरियात हमारी कैसी लग रही हैं। बिल्कुल हमारे स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 पर कॉल करें, हमें बताएं, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आप सब ने ईद जो है वो कैसे गुजारी और क्या क्या पकवान जो है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और वाकई अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत जो लम्हात होते हैं, स्पेशली सारी फैमिली के साथ गेट टुगेदर हो और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से जो है फैमिली के साथ मिलने से, बच्चों को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपने वो क्या कहते हैं गिफ्ट्स ईदी देने के साथ साथ मैं ये भी बात अभी मेंशन करूँगी बड़ी ईद के ऊपर ईदी का क्या सिलसिला होता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी माशाल्लाह जो है खूब रज के थकावट होती है और फिर जब सोने के लिए जाते हैं तो पता नहीं होता कि दुनिया किधर है और जब फिर सुबह सुबह आपको कॉल आए वो हमारे लिए सुबह सुबह होती है 9 o'clock कि जी आप ईद के हवाले से प्रोग्राम करना चाहेंगी। तो मैंने सोचा कि चलें अब देखें, बात कह देनी चाहिए, बात कहने में तो कोई हर्ज नहीं होता और माकूल बात हो और वज़न रखती हो, अच्छी बात हो तो कह देनी चाहिए। जी बिल्कुल, चाहे हम लाइव बात कर रहे हैं। तो मुझे फील हुआ कि आज मेरी ईदी जो है बड़ी अच्छी अमाउंट में मुझे मिलेगी इंशाल्लाह विद माय प्रोग्राम। सोचिए इस बारे में मैं किन के लिए कह रही हूँ। बिल्कुल देखिए, ईद है, ईद का स्पेशल प्रोग्राम हो रहा है तो फिर ईदी तो होती है ना ईद के ऊपर। तो मज़ा सामीन इकराम, आप लोगों की तरफ से जो ईदी होती है ना, अच्छा चले मैंने कहा कि मैं अभी शेयर करती हूँ कि बड़ी ईद का क्या सिलसिला होता है। बचपन से हम लोग बड़े जी छोटी ईद के ऊपर, छोटी ईद उसको कहते हैं ना, ईद उल फितर के ऊपर खूब यूज्ड टू हो चुके होते हैं हर किसी से पैसे बटोरने के, बच्चे होने के साथ साथ कि जी बस हर तरह से ईद ही मिलेगी। अब बड़ी ईद आई है, ये ईद उल अदहा, तो बहन भाइयों की तरफ देख रहे हैं, वो कहते पुत्र ओ बच्चू ये बड़ी ईद जो थी, ये ईद उल अदहा, ये वो बकरों की ईद होती है, उनको हमने ज़िबा करके मीट खाना है, मीट खाओ मीट है, बच्चों को मीट से क्या दिलचस्पी होती है। अच्छा पैसे नहीं, नहीं जी इतने पैसे खर्च करके तो हम कुर्बानी का जो जानवर लेके आए हैं तो आपने वही खाना। अच्छा तो फिर ये होता है, तो फिर इसलिए लेकिन ये मेरी बात यहाँ पे मैं फंसी नहीं हूँ क्योंकि वो तो बचपन होता है ना और अब बड़े हो गए हैं तो ये नहीं कहना ये आप ईद कुर्बान का प्रोग्राम कर रही हैं तो ईदी नहीं, ये देखिए वो तो मैंने बचपन की वैसे आपको बात सुनाई है। ईदी तो होती है ना भाई, ईद चाहे ईद उल फितर हो, ईद उल अदहा हो, तो ईद मिलती है, क्यों नहीं। देखिए ईद उल अदहा पे अच्छे अच्छे कपड़े और मेहंदी लगाने का जो भी हमारा एक बाकायदा एनवलप आ जाता है हाथ में कि जी ये आपकी ईदी है, इसको जैसे मर्जी खर्च करो, तो वो मैं उस सेंस में कर रही हूँ। देखिए हम भी बात को कवर कर लेते हैं भाई। तो क्या ख्याल है कि हमारी रेडियो टीम की तरफ से कितनी ईदी होनी चाहिए। और मौजूद सामईन इकराम, जैसे आरफा आपा जो हैं हमारी बहुत ही खूबसूरत हस्ती हैं और उनकी बातें एक दुनिया सुनती है, तो आरफा आपा ने एक दफ़ा कहा कि लोग मुझे कहते हैं आप बातें बहुत अच्छी करती हैं जी, आपका प्रोग्राम क्या बात होती है, आप तो हिकमत और दानाई की बड़ी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करती हैं। आरफा आपा ने बड़े मुस्कुरा के कहा, कभी हमसे किसी ने ये नहीं कहा आरफा आपा आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती, आज आप प्रोग्राम भी कर रही हैं, कुछ आपकी तबीयत ठीक है, आपको चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए आप, मतलब इस तरह से वो इतनी खूबसूरत उन्होंने बातें कही पूरी, अब मैं क्या आपको बताऊँ। तो बड़ा मुझे उनकी बातों से अच्छा लगा कि किसी भी प्रोफेशन में हम किसी अपने दोस्त अहबाब से रिलेट हो जाते हैं
वो हमारे सामने इंसान आ जाता है या आ जाती है, हम अच्छे अल्फाज में उनको कहते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, हाँ भाई आप बहुत अच्छा बोल लेती हैं, आपके प्रोग्राम सब बड़े, तो कभी ये सोचते हैं कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं आपके लिए, मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे लिए ये सिलसिला शुरू कर दें, एक ओवरऑल जनरल बात करें, कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, कोई भी आपको प्रेजेंटर, कोई भी किसी अच्छे शोबे में, यकीन करें कि मैं कोई बहुत बड़े नहीं बोल बोलती या मैं अपनी जी मुँह मियाँ मिठू बन रही हूँ तारीफ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमेशा से कोशिश होती एक कार्ड, गिफ्ट कार्ड जो है ना वही मैं किसी को दे दूँ। शुरू से मैं इस मुल्क में, जब से इसमें भी बल्कि बचपन से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीचर्स को, दोस्त अहबाब को, अहबाब जो करीबी हमारे फैमिली, इतनी खुशी होती, चाहे आप मुस्कुराते हुए, मैं समटाइम्स अपनी टीचर्स के लिए जो फ्रेश फ्लावर होता है ना वो मैं एक ले जाती, वो इतना खुश होती, इतनी दुआएं देती कि मैंने कहा और मैं कुछ नहीं, मैं ये आपके लिए लेके आई थी, बड़ा खूबसूरत सा फूल, अच्छा लगा मुझे, मैं ले आई। तो यहाँ पे तो वाकई एक किस्म का जुर्म समझा जाता है फूल जो है ना वो तोड़ना, लेकिन अपने गार्डन का ले जाए उसमें कोई कबाहत नहीं है। ये इस बारे में बड़ा यहाँ पे अलर्ट रहना है, हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक तकाजे होते हैं, तो वो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसी में आफियत होती है, तो लेकिन अपने गार्डन का ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो या फिर बाय भी इंसान कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक अच्छे तरीके से मुझे याद आ गया, मुझे याद पड़ता है कि हमारे माशाल्लाह, अब मैं यहाँ पे जो अच्छी बात है उसको कहना भी चाहिए कि मैं, मेरा ख़्याल पिछली दफ़ा ऐसे हुआ कि एनवलप हमारी रेडियो की टीम से मुझे मौसूल हुआ कि जी ये आपका गिफ्ट है ईद के हवाले से। बड़ी खुशी हुई कि अब मैंने कभी भी हिसाब किताब नहीं किया, ना उसको गिनती की है, वो अल्फाज ही जो होते हैं ना वो आपको खुशी दे जाते हैं, यकीन करें। अगर हम भी इन छोटे छोटे अल्फाज का ही ख्याल करें और दूसरों को अच्छे तरीके से, बहुत पुरमसरत तरीके से ईद उल अधा या ईद उल फितर, ईद मुबारक कह दें, वो भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ एक छोटा सा गिफ्ट जो होता है ना आपको, वो हमारी वैल्यू तो क्या बढ़ाना, लेकिन दूसरों की दिली खुशी का बाइस बन जाता है। क्या ख्याल है इन चीज़ों का? तो खैर इनके बारे में मुझे भी बल्कि और ज़्यादा सोचना होगा, मैं पहले अपने आप को परखती और सोचती होती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन गिफ्ट्स वगैरह का सिलसिला जो है वो जारी, वैसे ये दोनों तरफ से होता है, वैसे ये बात तो मेरे ऊपर भी अप्लाई होती है भाई, हाँ ये तो सोचना पड़ेगा भाई, तो खैर इसका भी ख्याल रखते हैं, ख्याल तो बहुत रखना पड़ता है हर जगह पे। तो इसलिए इस वक्त मैं आपका ज़्यादा कीमती वक्त नहीं लूँगी, आपके लिए तफरीह तबा के लिए ईद का मौका है, बहुत ही खूबसूरत सुहाना, तो एक सुहाना सा एक और गीत सिलेक्ट किया है आपके लिए, चले आए आइए एक खूबसूरत सा गीत सुनते और अपने वक्त को और ज़्यादा खूबसूरत करते हैं, क्या ख्याल है आप लोगों का?

0: जी बिल्कुल मुझे सामने निक्राम प्रफरेशन रेडियो 1413 AM पर ईद उल अदहा का खुसरसा प्रोग्राम जारी हो सारी आपकी आमद के मुंतज़र। आप भी अपनी फरमाइश हमें भेजें और फ़ोन करें हमारे फ़ोन नंबर स्टूडियो फ़ोन नंबर पर 01274306677। हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk। ये माना कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत ही बिज़ी हैं, कल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत बिजीएस्ट डे जिसे कहते हैं ईद उल अदहा का रहा, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जो है वो खुशियों का अल्हम्दुलिल्लाह समा, अल्लाह पाक ऐसे ही रखे हम सबको, हमारे मुझ समेत आमीन, हमारे घरों में आल औलाद को हम सबको अल्लाह पाक खुश रखे, खुश व खुर्रम रखे, हमारे घरों में अल्लाह पाक हमेशा खैर व बरकत का नज़ूल रखे, आमीन। इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये खूबसूरत दुआओं के हिसार में रहते हुए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट करनी है। बिल्कुल इस वक्त भी आपकी तफरीह तबाह का भी ख्याल रखा जा रहा है, ऑब्वियसली बहुत ही खूबसूरत सुहाना दिन है, त्यौहार है, और हम इस त्यौहार को दिल चाहता है कि पूरे जोश व खरोश के साथ, और स्पेशली जब वेदर भी नाइस हो, और फिर बच्चों को जो है इन सब फ्राइज से भी हमने रुशनास करवाना है, उनको बताना है, साथ साथ उनकी तरबियत चल रही होती है, और साथ साथ हम अपनी जो कहते हैं तफरीह तबाका के साथ साथ अपनी और जो रूटीन मैटर्स होते हैं उनको भी साथ रखना होता है, मतलब हर एक जाविये और एंगल से बड़ों ने देखना और सोचना होता है। तो बहुत अच्छा लगता है भाई कि ऐसे मौका पर हम कुछ जो है थोड़ा सा ओवर स्पाइस्ड जिसे कहते हैं ना खाना जो है वो कुछ बना लें, तो लेकिन उतनी हद तक जितनी तबीयत इजाज़त दे। तो खैर इस वक्त भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी पसंद का हत्तल वसा जो है ख्याल रखा जाए, और प्रोग्राम जो है इससे मैं ख़ुद भी लुत्फ़ानंदोज़ हो रही हूँ, और आप सब भी जो हैं इस वक्त प्रोग्राम के संग संग चल रहे हैं। जी एज नॉर्मल एज यूजुअल हमें छोटी सी ब्रेक के ऊपर जाना होता है, तो फिर आफ्टर द ब्रेक फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
2: 1413 AM एंड ऑनलाइन। You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
3: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले,
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबी रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार,
4: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज,
5: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD88NG, फोन 01274472577।
6: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
8: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गांव स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
8: मैनिंगम सुपर स्टोर।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।
5: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
7: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
5: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
7: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
5: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए,
7: 07548419678।
5: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
10: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: जी मज़ो सामीन इक्राम, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM पर ईद उल अधा का खूबसूरत सा ये प्रोग्राम जो है आप समात फरमा रहे हैं। आपकी समातों से बहुत ही खूबसूरत जो कहते हैं गीत भी टकरा रहे हैं और बहुत खूबसूरत अल्फाज भी आप समात फरमा रहे हैं। कोशिश ये है कि ईद उल अधा के इस सुहाने और पुरमसरत मौका को और ज़्यादा हम सुहाना बनाएं और मिलकर ईद का पैगाम जो है पूरी दुनिया तक पहुंचा दें। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। इस वक्त मौजूद सामईन इकराम, मेरे सामने जो ग्लोबल ईद उल अधा एंथम जिसे कहते हैं 2026 मेरे सामने है और ये एंथम जो है ये हरारी, हाउसा, अरबिक एंड इंग्लिश वर्जन में है एंड वेरी नाइस। ये हमारे पास एक मुतरन्नम जिसे तराना कहते हैं, वो मुतरन्नम तराना है और I think you will enjoy this beautiful anthem. आप एक दफ़ा सुने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और ग्लोबल जो है वर्ल्ड वाइड एक ईद उल अधा की खुशियाँ जो है वो तकसीम की जा रही हैं। थोड़ा हट के जिसे कहते हैं ये मेरे पास कलाम है, बहुत ही खूबसूरत, बल्कि हासले कलाम भी कह लें तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम सबको खुशियों में शामिल कर रहे हैं, ख़ुद भी अपने समेत हम सबको ईद की खुशियां जो हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं, कह रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो आइए मज़ीद क्या इसके ऊपर तबसरा करना, एक ख़ूबसूरत सा ये मुतरन्नम तराना जो है वो समात फरमाते हैं।

ऑफ इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन, तो ये सारी जो हिंद को और पश्तो सारी लैंग्वेजेस का अब रखा है, तो उसकी वैसे तो यहाँ पे मैं तो वीडियो साथ देख रही हूँ, तो इसमें इंग्लिश वर्जन सारा ट्रांसलेशन साथ दे रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रही हूँ कि अरबिक वर्जन जो है कुरान पाक की ज़बान है माशाल्लाह, तो बड़ी समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी खूबसूरत एक वर्ल्ड वाइड मैसेज पहुँचाया जा रहा है, और अमेजिंग ब्यूटीफुल है भाई, वाकई बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ सामईन कराम आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये कलाम, और यकीन करें कि इस वक्त जो साते ये पल जो हैं ईद के जो गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला से ढेरों ढेर दुआ है कि बिलखसूस हमारे बाल बच्चों को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता करे, आमीन, और उनके अंदर ईमानी ये जो खसूसियात और ईमान की लज्जतें जो हैं उनके दिलों दिमागों में अल्लाह ताला उंडेल दे, और हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला ये सब रहमतों का फजल का नज़ूल करे, आमीन। यकीन करें कि मौज़ सामईन इकराम कि ये जो खुशी के लम्हात होते हैं इनका वो जिसे कहते हैं ना कोई निमल बदल ही नहीं होता, इसीलिए तो अल्लाह करीम ने हमारे लिए ये जो खुशी के लम्हात हैं वो फ्राहम किए। और देखें ये कहा जाता है कि इस्लाम जो है ये दीन फितरत है। फितरत क्या है हमारी? हमारी फितरत है में है कि हम सोचते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, जर्नी कहाँ ख़त्म होगा, हमें खुदा न खास्ता ख़तरात ना कोई ज़िंदगी में आए, परेशानियों से अल्लाह महफूज रखे, परेशानियों से हम महफूज रहें, हम सोचते हैं, तो फिर तसव्वुर किस हस्ती की तरफ जाता है? वो हस्ती आला वरफा पाकीज़ा तरीन अल्लाह नूर समावाती वलर्द, वो जिसने हमारी फितरत का ख्याल रखा, वो दीन इस्लाम हमें वो दीन दिया, वो एक लाहे अमल दिया, एक प्रैक्टिकल रिलीजन कि जिसमें ज़िंदगी हमारी एक एक कदम पर जो है वो हमारी फितरत के मुताबिक ढाल दी गई कि हम इसमें जो जितने भी कवानीन हैं हमें खुद से अच्छा लगता है, हमें अपनी एक एक किस किस एंगल से यानी जो जो कुछ मेंशन्ड इन कुरान अहदीस मुबारका, तो यकीन करें भरपूर माशाल्लाह मसर्रतों से लबरेज़ जिसे कहते हैं लाहे अमल है। मौज़ सामईन किराम, चूँकि मैंने हदीस मुबारका का ज़िक्र और दुनिया का ज़िक्र साथ हो रहा है, तो मुझे हदीस मुबारका जो है नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई, जिसका मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मिसाल जो है वो एक समंदर से इसे तशबीह दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखरत की मिसाल जो है ना एक समंदर की सी है। जब हम समंदर में जाते हैं और किसी ने समंदर में अपनी उंगली जो है वो डुबोई और जब बाहर निकाल ली तो उसमें जितना पानी लग गया, उस उंगली में जितना पानी लग गया, तो ये दुनिया की मिसाल उस उंगली के पानी जितनी है, इतनी ज़िंदगी है ये, बस इतनी शॉर्ट है। और जो जितना रेस्ट ऑफ समंदर है हमारे पास, ओशन है, पानी है, उसका वो आखिरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। के तो देखें ये दुनिया बहुत शॉर्ट, यहाँ पे हमारा जर्नी है, तो जो आखिरत है जहाँ पे हमें इस जर्नी से हमने जो भी कमाया, कमाई की, वो आखिरत में काम आएगी। कितना बड़ा ओशन है, कितनी बड़ी वो जन्नत, परमानेंट फॉर एवर। एक अकलमंद दानाओ बीना जिसे कहते हैं इंसान किसको प्रिफर करेगा, एक टेम्परेरी चीज़ को या एक परमानेंट को, ये हमने सोचना है, अपनी सोच को वसी करना है पॉजिटिविटी में रहते हुए और बहुत ही खूबसूरत सफ़र में रहते हुए, सुहाने सफ़र में रहते हुए, कि टेम्परेरी चीज़ को हमने फोकियत देनी है और इम्पोर्टेंस देनी है, या कि परमानेंट इटर्नल वर्ल्ड को, सोचिएगा ज़रूर इस बारे में।

जी बिल्कुल मौजूद सामीन इकराम, खूबसूरत और खूबसूरतियों से लबरेज ये जो लम्हात हैं ईद उल अधा के, बहुत अनमोल, बहुत प्रेशस लम्हात के, जिसमें हम अल्लाह करीम के ढेरों ढेर शुक्र गुज़ार हैं कि जिसने हमें इतना खूबसूरत हमारी ज़िंदगियों का पैकेज अदा कर दिया, और अनमोल और ख़ूबसूरत घड़ियाँ जो हैं बार बार, कभी बच्चों की दीदनी खुशी की तरफ नज़र जाती है, कभी बाहर देखें तो माशाल्लाह एक ईद का सा समा और सारी रब की खुदाई, जो जिसे कहते हैं अल्लाह ताला की खुदा होने का, तो वो तो खुदा है ना, तो उसने पैदा की है अपनी मखलूक, तो जो उसकी मखलूक है अपने खुदा की हम्दो सना के साथ साथ उसका शुक्रिया, ये तशक्कुर है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है अपने आप को इस पूरे जो ये जो पूरा हमारा दिन होता है ईद उल अधा का, और तीन दिन ये तशक्कुर के तौर पर जब हम किसके लिए तैयार होते हैं, किसके लिए खुशबुओं का एहतमाम किया जाता है, किसकी निगाहों में अच्छा बनना है, ये सारा जो है सोचना है भाई, हमने सोचिए आप भी और मैं भी, तो वो तो जाहिर है कि आवाज़ यही आती है ना कि अपने रब को राज़ी करना है ना, तो ये अपनी ज़ात का ख्याल रखना, अपने आप को अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए, खुशनुदी के लिए तैयार खूबसूरत बनना, अपनी ज़ात को निखारना, पाकीज़गियों के सफ़र में रहना, अपने आप को पाकीज़ा रखना, तहारत पाकीज़गी, तहारत नज़ाफ़त का ख्याल रखना, नेकियां हैं, नेकियां हैं, सरासर नेकियां हैं। और फिर अल्लाह बंदा जो है अपने रब से जब कुछ मांगता है वो ढेरों ढेर अदा कर देता है, ये देखना है हमारे इर्द गिर्द, यकीन करें बाहर निकलें, ईद का समा है, अल्लाह पाक की सारी मखलूक जो है, सारे अल्लाह पाक के बंदे बंदियां, बच्चे बड़े सब खुशी का इजहार लिए खूबसूरत मलबूसात में, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल पैदा हो रहा, हम किसके ममनूनों मशकूर हैं, सर सजदे में किसके लिए जाता है, अपने रब के लिए खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे बात एक याद आ रही कि मैं सोचती हूँ कि मैं जब ये प्रोग्राम भी कर रही होती हूँ, मुझे हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का बहुत ही खूबसूरत उनका कौल मुबारक याद आ रहा है कि अगर तुम्हारे जो तुम पेशा इख्तियार किए हुए हो ना उसका तुम्हारी पर्सनालिटी पे असर नहीं हो रहा ना, तो फिर वो तुम्हारा पेशा जो तुम्हारे लिए कारामद नहीं है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए बयान करने में। बल्कि मैं अगर टू बी ऑनेस्ट अगर देखा जाए ना ऑनेस्टली, तो मैं फील करती हूँ, मैं कहती हूँ ये प्रोग्राम जो है ना रेडियो के, तुझे अच्छी तरह बंदे दे पुत्र ही बना के छोड़ेंगे। वो इंसान एक गुफ्तगू कर रहा होता, बात कर रहा होता है, तो मैं कहती हूँ कि हर लम्हा पर ये जैसे कि ये गुफ्तगू मेरा हिसार किए हुए होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत अल्लाह ताला की मैं शुक्र गुज़ार होने के साथ साथ इसीलिए मैं कहती होती कि मैं कोई फ्लैटरिंग, कोई आप लोगों की खुशामद मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, जब रब्बे करीम की मैं इतनी एहसान मंद होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ या करीम अल्लाह, ये जो पूरी टीम कैसे, ये देखें एक सिस्टम है, और एक सिस्टम में ज़रा सी खराबी पैदा हो जाए तो पूरे का पूरा सिस्टम, निज़ाम यहाँ का, स्टूडियो का दरहम बरहम हो जाता है। तो इनको संभालना और सबके लिए सबके साथ अच्छे रहना, और फिर और जहाँ तक सुनने की बात आ जाती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि जब गुफ्तगू बहुत ही मेरे दिल को लग रही हो तो मैं हटती नहीं हूँ उस प्रोग्राम से, मैं कहती हूँ चाहे मेरे काम पड़े पड़े रहने दो भाई, मैंने ये सुनना है, बहुत ही अरसे दराज जिसे कहते हैं ना, एक अरसा दराज के बाद ऐसी गुफ्तगू सुनने को मिली है कोई हो, फिर सारे कहते हैं बड़ी मुनहमिक ऐसे मत छेड़ो, इसे लगी रहने दो, ये थोड़ी देर बाद कोई जो है ड्यूटी इज ड्यूटी करनी है। तो मैं सोचती हूँ कि या खुदा
اللہ کریم میرے اندر بھی وہ سوز و گداز پیدا کر دے کہ آپ لوگوں کا جو ٹائم ہے بڑا پریشس, بڑا ہی قیمتی ہے. اس میں سے سننا کسی کو بہت بڑے کام کی بات ہوتی, اور پھر سن کے اس کو سراہنا کہ یہ بہت اچھا. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بہت اچھا بھائی آپ نے تو گفتگو کمال کی کر دی, تو پھر خود سے بھی سوچتی ہوں, میں سنتی ہوں الحمدللہ. ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہماری اسلامک سسٹر ہیں, ایک اور ہماری سسٹر جو ہیں فاطمہ فضل, ان کا نام ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت. فاطمہ فضل کی مجھے بات یاد ہے, میں ذہن نشین کر لیتی ہوں کہ اپنے دل و دماغ پر دربان بن کے بیٹھ جاؤ. ان کا انداز خوب گفتگو بڑا خوبصورت, بڑا ہی انہوں نے لفظوں کی وضاحت کی, لفظوں میں کی خوبصورتی میں ڈیپتھ میں جاتے ہوئے. اپنے دل و دماغ, خواتین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اپنے دل و دماغ پر, اور بھائی مردوں میں کے لیے بھی ہو سکتی ہے, کیوں نہیں, ان کو بھی خیال رکھنا ہے تہار تو پاکیزگی کو تو سب کو, لیکن بالخصوص خواتین کے لیے, کہ اپنے دل و دماغ پر دربان بن کے بیٹھ جائیں, دیکھیں کون اندر جا رہا ہے اور کون باہر آ رہا ہے. بس چند لفظوں میں اتنی خوبصورت بات کہہ دی, ایسی باتیں جو ہوتی میرے دل کو چھوتی ہیں پھر, اور خود سے بھی کوشش کرتی ہوں. سمعین اکرم کال کی طرف بڑھتے ہیں, پھر آپ سے بات چیت.

0: जी बिल्कुल माज़ा सामईन इकराम, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर, फीडबैक का बहुत शुक्रिया, ब्लेस यू ऑल इंशाल्लाह ताला, मेरे समेत सबके ऊपर अल्लाह पाक अपनी रहमतों का नज़ूल करे। थैंक यू प्रोग्राम को पसंद करने का, और कॉल्स जी बिल्कुल बहाल हैं, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों। और यकीन करें कि हम सब के लिए बात यही हो रही थी कि जब सुनना होता है ना, तो सुनने में भी बहुत एक तो कमाल की बात होती है किसी को सुनना, और फिर हमारी तबीयत भी कुछ ऐसी है, अरे क्या है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और आगे देखते हैं। लेकिन अगर बात पते की हो, खूबसूरत हो, दिल को छू रही हो, फिर तो कोई हमारा पसंदीदा प्रोग्राम हमें पता है किस ट्रैक पे चल रहा है, नहीं भाई चलने दो भाई उसे, हमने बातें खूबसूरत सुननी है। तो मैं यही एक तो दुआ भी होती है अल्लाह ताला से कि बहुत ही पॉजिटिव ट्रैक पे रहते हुए अच्छी बातें करूँ। अब चूंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी फिर हमारी ब्रेक का टाइम होगा, आफ्टर द ब्रेक पूरा जी ख्याल रखेंगे हम आपके, कुछ थोड़ी गुफ्तगू हो, थोड़ा आपका जो है खूबसूरत सा गीत सॉन्ग और कोई कलाम कोई जो भी है, अभी इस वक्त मेरे पास सूफियाना कलाम बहुत ही खूबसूरत है, तो उसको लेके बढ़ेंगे। और यकीन करें कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा सूफियाना कलाम, आप भी यकीनन इसे पसंद करेंगे। तो आफ्टर द ब्रेक हम ऐसे ही खूबसूरत जो कलाम है, मैं वैसे कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी, भरपूर कोशिश करूँगी कि थोड़ी गुफ्तगू के साथ साथ खूबसूरत कलाम जो है आपको पेश करती रहूं। लेकिन मेरा ये जाविया और नुक्ता नज़र होता है कि एक बात कुछ मैं अगर छेड़ती हूँ तो उसको थोड़ी सी वजाहत तलब होती है, तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिलसिला अच्छा लग रहा होगा। तो फीडबैक का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ऐसे ही भरपूर तरीके से भरपूर कोशिशों के साथ लगे हुए हैं खूबसूरत अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का जिक्र करते हुए, और इन खूबसूरत लम्हात को हम एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऐसे ही ये सफ़र जारी व सारी रखेंगे। तो बिल्कुल देख रही हूँ कि हमारी ब्रेक का टाइम है, और ब्रेक पे जाना है, तो आफ्टर द ब्रेक बिल्कुल खूबसूरत सा पैकेज आपका मुंतजिर है। थोड़ा सा पैकेज रह गया, थोड़ा सा प्रोग्राम रह गया है, हिलिएगा नहीं, हटिएगा नहीं, इसी ट्रैक पे रहना है, इसी को सुनना है। आप यकीन करें कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और
1: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज़
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

बेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को उनकी तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 488 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
11: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
12: मेनिंगम सुपर स्टोर,
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
15: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
16: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

जी बिल्कुल मोज़ सामईन इकराम, वक्त का खूबसूरत हिसार जो है वो ब्रॉडफ्रेशन रेडियो 1413 AM पर हमें उस तरफ लेके जा रहा है कि जहाँ वक्त अलविदा जो कहते हैं वो पहुँचता है कि प्रोग्राम जो है अलविदा कहना होता है। यकीन करें कि मैं जैसा कि पहले भी आपको बता रही थी कि प्रोग्राम की जो तरतीब कुछ इस तरह से होती है और वजाहत व फसाहत व बलागत करते करते ना कुछ मैं ख़ुद भी इतनी डेप्थ में माशाल्लाह चली जाती हूँ कि मुझे ख़ुद से एहसास होता है कि ज़िंदगी का सफ़र अल्लाह करीम ने बड़ा खूबसूरत रखा है। अल्लाह ऐसे ही रखे खूबसूरत सफ़र मेरे हमारी आल औलाद को, हम सबको लपा खुशियों से, आपको हम सबको लपा खुशियों से माला माल कर दे इंशाल्लाह ताला आमीन। ढेरों ढेर खुशियों, ढेरों ढेर अपने ख़जानों से इंशाल्लाह ताला आमीन, उसके रहमत के फजल के ख़जाने जो है उनसे। और फिर मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लुत्फ़ानंदोज़ हो रही होती हूँ कि जब प्रोग्राम इंतहाई खूबसूरती पर होता है मेरा ख़ुद भी दिल नहीं चाह रहा होता है कि मैं, बल्कि हमारे एक बहुत ही अच्छे कॉलर मुझे याद है उस दिन कह रहे थे कि क्या ख्याल है कि आपके लिए सारी एडवर्ट्स जो है बंद ना करवा दिया करें और कहें कि बस आयशा अख्तर का प्रोग्राम चल रहा है जी, कोई भी जरूरत ना करें ना कोई कॉल करने की और ना ही कोई जो है एडवर्ट चलाने की, बस प्रोग्राम हम सुन रहे हैं जी और अच्छे अंदाज में और राजते सीन पेश करते हुए कह रहे थे, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और इस वक्त मेरी घड़ी के ऊपर नज़र गई तो मेरे पास एक कलाम भी बड़ा खूबसूरत है और इस कलाम की तरफ भी बढ़ते हैं तो महसूस होता है कि रब्बे करीम के बेपाया ख़जानों में से जब हम ख़जाने लूटते हैं वो बहारें, तो फिर देखिए मेरी गुफ्तगू तो फिर थोड़ी सी लंबी होगी ना, लेकिन अगर इफ़ेक्टिव गुफ्तगू हो और मौसर और कॉम्प्रिहेंसिव जामे हो तो फिर थोड़ी सी अगर 5-6 मिनट से बढ़ जाए तो प्लीज़ मैं माइंड ना कीजिए आप इसका माइंड नहीं करना, क्योंकि मुझे ख़ुद भी एहसास है कि थोड़ी गुफ्तगू के साथ साथ आपके लिए कलाम लेके आना है। तो ये गुफ्तगू भी जब मैं ख़ुद भी इससे बड़ी महजूज़ हो रही होती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि इसकी डेप्थ में मज़ीद जाया जाए। तो चलें खैर कलाम जो है वो इसी, चलें मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा सुनना, आपका सुनना और मेरा सुनाना अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि खूबसूरतियों से हम सफ़र तय करें, और स्पेशली जब ईद उल अज़हा का मौका है तो पूरी कोशिश है भरपूर कि हम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, मैं सिर्फ जो कर रही हूँ वो नहीं बल्कि आप समात भी फरमा रहे हैं, आप मुझे फीडबैक के ज़रिए से भी मज़ीद हमारी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता है, बता सकते हैं इसको मज़ीद कैसे हम प्रोग्राम को निखार सकते हैं, खूबसूरतियों की तरफ और ज़्यादा कशां लेके जा सकते हैं। तो उसमें से एक ये भी मेरे लिए होती है तनबीह कह लें या एक एहसास भी दिलाना होता है कि जी बिल्कुल मैं एक कलाम की तरफ भी बढ़ती हूँ। तो ये कलाम का जो मुझे सो फार समझ आई कि हम किसी के अंडर, देखिए तो सबसे बेहतरीन तो हमें अंडर रहना अल्लाह ताला के अच्छा लगता है, बेशक ये हमारा फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अव्वलीन है, अल्लाह ताला के अंडर हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमें जो सारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा में दिया और उनकी इत्तबा करनी इंशाल्लाह, और फिर मासूमीन की, मैं अपने मासूमीन के लिए मेरे अल्लाह का एहसान है, मुझ पे बड़ा एहसान मेरे रब का, मेरे मासूमीन जो हैं मैं उनका तसव्वुर कर रही हूँ, आपने जिनका तसव्वुर करना है आप करें और ये कलाम सुने, फिर कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा।

0: जी मौजूद सामईन इकराम, बहुत ही खूबसूरत सूफियाना कलाम जो है हम सब मिलकर समात फरमा रहे थे। ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर ईद उल अधा का ये खसूसी प्रोग्राम आयशा अख्तर के संग आप समात फरमा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बाज़ौक, जिसे कहते हैं ना कि बाज़ौक प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ौक लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बाज़ौक जब चॉइस हो जाती है तो फिर वहाँ पर न सिर्फ प्रोग्राम जो प्रेजेंटर होता है उसको करने में लुत्फ़ आ रहा होता है, बल्कि सुनने में भी जितने भी मौजूद सामईन इकराम हैं वो ज़रूर इससे न सिर्फ महजूज हुए होंगे और हो रहे हैं, बल्कि मसरूर, मसहूर, और जिसे कहते हैं ना कि एक जिसकी जो इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो रहा होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हो रहा होगा, और यकीन करें कि बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा कि बयान तो जो कर ही रहे होते हैं, लेकिन सुनना बड़ी बात होती है, और सुन के फिर आप उस चीज़ को जब सराहते हैं तो इट मीन्स के वो खूबसूरतियाँ आपके अंदर, वो रानाइयाँ आपके अंदर हैं, और ख़ूबसूरत चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया। जैसे एक मकनातीस की कशिश जो होती है ना, आपको पता है ना कि मैग्नेटिक पावर जो होती है वो स्पेशली जो ये आयन होता है लोहे को अपनी तरफ खींचती है। बात मेरी, मेरा ख्याल आपके समझ में आ गई होगी, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रोग्राम भी कर रही होती हूँ और ऐसे कलामात भी सुन रही होती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही महजूज हो रही होती हूँ। और मैंने तो कहा था कि तखय्युलाती दुनिया में देखे हमारा रब जो है बहुत से मकामात पर हमारे ऊपर कोई ऐसा मुश्किल काम आने से पहले ही अल्लाह ताला उस उन बलाओं को टाल देता है, मुश्किलों को अपने दूर कर देता है, और मुसीबतों को, आफात उबलियात को हमसे दूर कर देता है, और फिर अल्लाह के चोज़न घराने जो है, और उन घरानों में जो सबसे आला वर्फा मेरे रब ने घराना चुना अपना नबी महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, वरफ़ा अना लका ज़िक्रक, के जिनके ज़िक्र को ही अल्लाह पाक ने बुलंद कर दिया, उनको रहमतल लिल आलमीन बना दिया, और वो नूरानी जो नूर है, अल्लाह के नूर से नूर पैदा हुए, और वो नूरानी घराना जो रहमतों का, फैज़ का एक दरिया है, समंदर है बहता हुआ, मौला अली मुश्किल कुशा। वो बस अब प्रोग्राम कुछ ऐसा तरतीब दिया हुआ था कि आपको पता है हर कलाम में मेरा मौला अली अलैहिस्सलाम का कलाम होता है, सुभान अल्लाह। तो प्रोग्राम का दौरानिया जो है इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, और लेकिन तिशनगी बुझी, और बड़ा अल्लाह का करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमेशा की तरह मैंने इस कलाम को फिर करते तो अल्लाह पाक की खुशी के लिए, हमारा हर कदम अल्लाह पाक की खुशी के लिए होता, और अल्लाह पाक का चोज़न घराना है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना मुबारक है ना, वो वरा उल वरा हैं, तो वो मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर उनकी आले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशकिस्मती, खुशबख्ती मेरी और हम सब की खुशबख्ती के उस घराने के साथ अल्लाह ने मोहब्बत हमें हमारे दिलों में पाकीज़ा घराने की डाल दी, और उनके हर एक बच्चे से प्यार हमारी रूह की ग़िज़ा बना दिया। तो जब तसव्वुर उन मासूमीन का हो, इमामों का हो, 12 इमाम और 14 मासूमीन का हो, आला वर्फा बीबी पाक बीबी सैयदा साजिदा तय्यबा ताहिरा का तसव्वुर हो, फिर ये कलाम सुने, यकीन करें कि आप वाकई कहेंगे कि मार्फत की दुनिया में कदम रखना मैं तो कुछ भी नहीं, एक ज़र्रा हूँ खाक का, करम उनका जो इस ज़र्रे को वो अपनी रहमत की आगोश में ले ले। तो موسیٰ سامعین اکرام، یہ ہوتا ہے کہ ماحصل، جسے پھر ہم کہتے ہیں کنکلوژن جو اینڈ پہ نکالتے ہیں، ماحصل لب لباب ہمیں مل جاتا ہے کہ ہمارا چلیں عشق کہہ لیتے ہیں، ویسے قابل تو نہیں ہوں میں اس کے، عشق والے تو بڑی منزلیں رکھتے ہیں، بڑی ان کے مقامات عشق والوں کو دے دیے میرے رب نے الحمدللہ، کہ ہم ان کے عشق کو یاد کر کے ہی خوش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو بڑھتے ہیں ایک بریک کے پر، اور بریک کے بعد تھوڑا سا پھر ٹائم آپ سے لیتے ہیں۔
1: And the winner is,
2: and the winner is,
3: and the winner is
1: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
6: Tora Bhadar Said ki taraf se Bradford Asian Radio ke sabhi sunne walon ko dil ki atao garaiyon se dil

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 Wetley Hill, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3489। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio
7: 1413 AM and online.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वह अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पर तशरीफ़ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वह अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें भी दिल की गहराइयों से आज की इस महफिल गज़ल उसने छेरी में शामिल करेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274 30 66 77।

और दोस्तों हज की ढेरों मुबारकबाद उन लाखों फर्जंदान तौहीद को जिन्होंने दुनिया के चार कोनों से तशरीफ़ लाकर ये अजीम फरीज़ा हज अदा किया। अल्लाह ताला उन्हें खैर वाफियत के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए वापसी पर और उनके हज को कबूलियत का शर्फ बख्शे। मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको पता है मेरी आमद के साथ ही हमारे मेहमान तशरीफ़ ले आते हैं। सर फहरिस्त हैं आज वक़ार मियाँ वेकफील्ड से, फिर तशरीफ़ लाए हैं रियासत साहब हडर्सफील्ड की हसीन फ़जाओं से, रियाज साहब ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से, सुमैरा बिटिया ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से, डॉक्टर मारुख साहबा ब्रैडफोर्ड की हसीन वादी से। इन तमाम अहबाब ने आपको सब अहबाब को मोहब्बत भरा सलाम प्यार दुआएं और ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद भेजी है। अब चल रहे हैं हम आपको लेकर वेकफील्ड, जहां वक़ार मियां अपने अहले खाना के साथ किसी फैमिली से मिलने जाने वाले हैं लेकिन अभी निकले नहीं हैं। कहते हैं कि गर्मी ने तो हद कर दी है। साहब यहाँ भी अहवाल कुछ यही है। मैंने अर्ज़ किया था आगाज़ प्रोग्राम में कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, हालांकि समझा जा रहा था कि आज गर्मी निस्बतन कम होगी लेकिन टेम्परेचर आज भी 29-30 तक जाएगा। अभी यहाँ मेरा स्टूडियो में तो खैर 31 है इस वक्त टेम्परेचर, लेकिन बाहर तकरीबन 27-28 था जब मैं ड्राइव कर रहा था। और अब चलते हैं उस गीत की जानिब जिसे सुनना चाहे वक़ार साहब और उनके अहले खाना ने। आप सबको हमारी तरफ से ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद, आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, कबूल फरमाइए। आमद का बहुत शुक्रिया, बहुत ख्याल रखिएगा खाने पीने में।

0: और ये पसंद थी उनके बच्चों की, आवाज़ विशाल मिश्रा की थी। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का, कमर्शियल के बाद हम आपको सुमैरा बिटिया बावर्ची खाने की रानी ब्रेडफोर्ड 3 से एक तोहफा ईद मुबारक के तौर पर अपनी तमाम कज़न्स को जो इस वक्त मिडिल्स बरा में सुन रही हैं पेश करना चाहती हैं, उनकी जानिब से हम ये तोहफा मिडिल्स बरा पहुँचाएँगे। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की हसीन वादी में, और दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर।
1: And online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: डॉक्टर साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, शेर तो बहुत याद है कि उन्हीं रास्तों ने जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफ़र कहाँ है। तो बहुत ही करीब है इस बड़े सानहे के बाद अगर उसे पढ़ा जाए शेर को डॉक्टर साहब के, तो मैं समझता हूँ बहुत मुनासिब होगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, आपकी यादें हमेशा अहले अदब के दिल में महफूज रहेंगे, आपके अशार हम जैसे चाहने वालों को अजबर रहेंगे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हम तौसीफ हाशमी और उनकी शरीक हयात नाहिद हाशमी को शारजा से गज़ल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं, और आप सबको, आपके अहल खाना को हमारी जानिब से ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद। और अब हम चल रहे हैं आपको लेकर ये अपने मिडिलसब्रा, जहाँ ब्रैडफोर्ड 3 से हमारी बावर्ची खाने की रानी प्यारी सी बिटिया सुमैरा ने अपनी कज़न्स के नाम इस खूबसूरत गीत का तोहफा ईद मुबारक के तौर पर भेजा है।
1: Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean.

दोस्तों अभी अभी हमारे हमराह टेलीफोन पर थे बर्नले से हमारे मोहतरम लिसनर और कॉलर जनाब शकील साहब, और कहते हैं कि मैं प्रोग्राम सुन रहा था और मुझे बे इंतहा दुख हुआ कि अदबी मैदान का ये शाहकार शायर इस दुनिया को छोड़कर चला गया। और उन्होंने हजरत डॉक्टर बशीर बद्र मरहूम की एक गज़ल भी सुनना चाहिए है जो हम उनकी नज़र करेंगे। अभी तो हम आपको लिए चल रहे हैं लैया पंजाब पाकिस्तान, जहां नज़ीर अहमद साहब हमारी बज़्म में मौजूद हैं। उनका मोहब्बत भरा सलाम हम आप तक पहुंचा चुके हैं और ये ख़ूबसूरत कलाम उन्होंने सुनना चाहा है ईदा आइया ने। सो हम आपकी नज़र करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ख़ूबसूरत पैगाम और आप तक पहुंचाना है, और वो है हमारे बहुत ही ख़ूबसूरत ब्रॉडकास्टर हैं जनाब मोहम्मद हेरी बूटा साहब। उन्होंने आप सब के लिए ईदुल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद भेजी है हेरी साहब ने, और कहते हैं कि तमाम सामईन और नाज़रीन को मेरी जानिब से दिल की गहराइयों से ईदुल अज़हा की मुबारकबाद, मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआएं। साथ ही साथ मेरे तमाम वो अहबाब और जानने वाले जो हैं उनके लिए भी उन्होंने ये खुसूसी तोहफ़ा भेजा है। दुआ फरमाइए, मोहम्मद हैरी बूटा साहब की तबीयत नासाज है, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से उन्हें सेहत कामिला और सेहत आजला नसीब फरमाए। और आइए दोस्तों चलते हैं लैया पंजाब पाकिस्तान, हमारे मोहतरम लिसनर नज़ीर अहमद साहब का तोहफ़ा उनकी नज़र करते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको लिए चलेंगे बर्नले और वो तोहफ़ा पेश करेंगे जो खराज अकीदत के तौर पर शकील साहब ने बहुत दुख का इजहार किया और कहते हैं कि बहुत बड़ा अदबी नुकसान है और शायद ये खला कभी पुर ना हो पाए। आपका ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है शकील भाई। नज़ीर आपका तोहफ़ा।

दोस्तों, आप 3 बजे के बाद हमारा सेगमेंट सुनते हैं, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। आज हम उसे अलकत कर रहे हैं और हम खराज अकीदत पेश करेंगे उस अजीम शायर को जो आज हमारे दरमियान से रुखसत हो गया, जनाब हज़रत डॉक्टर बशीर बद्र साहब को। उनके एक खूबसूरत मुशायरे में आपको लिए चलेंगे और उनका खूबसूरत कलाम, उनकी सहरंगेज़ आवाज़ में हम खराज अकीदत के तौर पर सुनेंगे, क्योंकि ये आवाज़ अब हमसे दूर जा चुकी है। डॉक्टर साहब का मैं इस कदर बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक मुशायरे में डॉक्टर साहब से जब मुलाकात हुई और उनसे मैंने दरख्वास्त की कि कोई शेर लिख दीजिए, तो उन्होंने जो शेर लिखा था वो आज तक उनके ऑटोग्राफ के साथ मेरे पास मौजूद है, और वो शेर वही था जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि डॉक्टर साहब का ऑटोग्राफ उनके अपने हाथ से अपने शेर के साथ मेरे पास मौजूद है, और वो है कि उन्हीं रास्तों ने जिन पे कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफ़र कहाँ है। तो हम थोड़ा सा प्रोग्राम में तब्दीली लाएंगे, कमर्शियल के वक्फे के बाद हम इस अजीम शायर को खराज अकीदत पेश करेंगे, उनके खूबसूरत मुशायरे की झलक जिसमें डॉक्टर साहब अपने खूबसूरत कलाम से लाखों सुनने वालों को नवाज रहे हैं, लिए चलेंगे। और उसके बाद हमारे मोहतरम शकील साहब ने, आपको पता है अदब के वो किस कदर शैदाई हैं, उन्होंने एक गज़ल मुंतखब की है डॉक्टर साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए, वो भी हम उसमें शामिल करेंगे खराज अकीदत में। तो पहले डॉक्टर साहब का मुशायरे में पढ़ा हुआ कलाम, उनकी ज़बानी, न जाने फिर कब मौका आए और हम इस अजीम शायर को खराज अकीदत पेश करने के लिए चाहते हैं। हक मग़फ़िरत करे अजब आज़ाद मर्द था, एक छोटा सा खराज अकीदत इस अजीम शायर जिसने लाखों दिलों को मसख़र किया अपने खूबसूरत अशआर और अनोखी और प्यारी सोच से। तो हम इंशाअल्लाह, कमर्शियल का वक्त हुआ जा रहा है, कमर्शियल के बाद खराज अकीदत बहुजूरे हज़रत डॉक्टर बशीर बद्र मरहूम।

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवत लेन, BD9 5ER।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 13।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि आज एक बहुत ही रूह फरसा ख़बर सुनने को मिली है और मैंने भी पढ़ा सब डॉक्टर साहब की इस जहान फ़ानी से रुख्सत होने का। हज़रत डॉक्टर प्रोफेसर बशीर बद्र साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहे, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी उर्दू के रहे और तदरीस के शोबे से आपका हमेशा ताल्लुक़ रहा और दुनिया के चार कोनों में आपने अपने फ़न का मुजाहरा किया और अपनी इनफरादी सोच, खूबसूरत अंदाज, संजीदगी और अशआर में मिठास लोगों के दिलों में घर घर गई। आज भी लाखों उनके चाहने वाले अश्कबार हैं कि अदब का चमकता हुआ ये चांद, जिसकी रोशनी दुनिया के चार कोनों में बिखरी हुई थी, आज हमसे रुख्सत हो गया। मैं समझता हूँ अदबी दुनिया में ये इतना बड़ा खला छोड़ गए हैं, एक अहद डॉक्टर साहब के साथ ख़त्म हो गया, एक बाब बंद हुआ जिसे पुर करना शायद कभी मुमकिन ना होगा। डॉक्टर साहब एक तवील अरसे से डिमेंशिया की, भूल जाने की बीमारी में मुब्तला थे। आपका क़याम डॉक्टर साहब का भोपाल में था, वहीं आपने आखिरी सांसें ली। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आसमान अदब के इस दरख्शिंदा, ताबिंदा, चमकते दमकते सितारे को, चांद को, ये तो शोरा में चांद की सूरत दमकते थे, मुशायरों में जाते थे, मुशायरा लूट लिया करते थे अपने संजीदा अंदाज से और ख़ूबसूरत कलाम और मुनफरिद सोच के अशआर से। डॉक्टर साहब हमसे रुख्सत हुए आज, हम अदब के शदाई हमेशा उन्हें अपने दिलों में बसाए रहेंगे, उनके कलाम को दिलों में बसाए रहेंगे। तौसीफ़ साहब, आपने ये रूह फरसा ख़बर सुनाई, फिर मैंने इसे कंफर्म किया और फिर मैंने दुनिया के चार कोनों में ये बता दिया कि ये अजीम शायर, हर दिल अजीज़ और महबूब शायर जहाँ फ़ानी से रुख्सत हुआ। शकील भाई पर बड़ा असर हुआ, वो प्रोग्राम सुन रहे थे आगाज़ ओपनिंग और उन्होंने फौरन खराज अकीदत के तौर पर उनकी एक गज़ल मुंतखब की कि हम उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे, इसलिए कि डॉक्टर साहब का कलाम ज़बा ज़दे आम है। मैं पाकिस्तान गया था और बतौर ख़ास ढूंढ ढूंढ के मुझे डॉक्टर साहब का कलाम कुलियात की सूरत में, कुलियात बशीर, बेशुमार किताबें हैं उनकी मेरे पास, सिंगल सिंगल भी हैं, लेकिन जो कुलियात है वो अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो जी चाहता है कि एक ही नशिस्त में उसे तमाम किया जाए, खासी तवील है। लेकिन उनके चाहने वाले हमेशा उनके खूबसूरत अशार को, उनकी सहर अंगेज शख्सियत को दिल में बसाए रखेंगे। आइए हम सब मिल के दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हजरत डॉक्टर बशीर बद्र साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, लवाहिकीन को और दुनिया के चार कोनों में उनके चाहने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आइए खराज अकीदत पेश करते हैं डॉक्टर साहब के एक आलमी मुशायरे में आपको लिए चलते हैं, जहां डॉक्टर साहब अपने खूबसूरत कलाम से लाखों चाहने वालों को जो उनके दुनिया के चार कोनों में हैं अपने खूबसूरत सहरंगेज कलाम से मशहूर कर रहे हैं।
10: जैसी पढ़ता हूँ वैसी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन इसमें दो शेर ऐसे हो गए जिसमें मुझे तस्वीर बनानी पड़ी, एक अपने यहाँ के महबूब की और एक आपके यहाँ के महबूब की। उसके बाद बीच में मैं नहीं बोलूँगा, तो ज़रा काम मुश्किल था, तो मैं मीर के दरवाजे चला गया, क्योंकि ये काम बस वही करते हैं। उन्होंने कहा साहब तो मामला ऐसा है, आप अपने अहद का तो सब काम कर चुके, कुछ हमारे अहद काम सिखा दो। तो उन्हीं की ज़मीन है बहुत मशहूर कि यारो ख़ता मुआफ़ करो मैं न शुरू। मैं अर्ज़ करता हूँ कि बाहर ना हो घर में रहो तुम नशे में हो, बाहर ना हो घर में रहो तुम नशे में हो, सो जाओ दिन को रात करो तुम नशे में हो, सो जाओ दिन को रात करो तुम नशे में हो। आप शेर भी ठीक होंगे लेकिन आपकी आवाज़ मिलती रहे तो मुझे पता चलेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ कि नहीं। बाहर ना आओ घर में रहो तुम नशे में हो, दरिया से इख्तलाफ का अंजाम सोच लो, दरिया से इख्तलाफ का अंजाम सोच लो, लहरों के साथ साथ बहो तुम नशे में हो, दरिया से इख्तलाफ का अंजाम सोच लो, लहरों के साथ साथ बहो तुम नशे में हो। क्या दोस्तों ने तुमको पिलाई है रात भर, अब दुश्मनों के साथ रहो तुम नशे में हो। क्या दोस्तों ने तुमको पिलाई है रात भर, अब दुश्मनों के साथ रहो, बेहद शरीफ लोगों से कुछ फासला रखो, बेहद शरीफ लोगों से कुछ फासला रखो, पी लो मगर कभी ना कहो तुम नशे में हो, बेहद शरीफ लोगों से कुछ फासला रखो, पी लो मगर कभी ना कहो तुम नशे में हो। मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि गज़ल का काम मैंने आपसे कहा कि दो तस्वीरें बनानी, एक अपने यहाँ एक आपके यहाँ की, मुलाजा फरमाइए कि कागज़ का ये लिबास चराहो मगर कभी ना कहो तुम नशे में हो। मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि गज़ल का काम मैंने आपसे कहा कि दो तस्वीरें बनानी, एक अपने यहाँ एक आपके यहाँ की, मुलाजा फरमाइए

0: कागज के ये लिबास चरागों के शहर में जाना समझ संभल के चलो तुम नशे में हो। आखिर शेर पढ़ता हूँ कि मासूम तितलियों को मसलने का शौक है। मासूम तितलियों को, अगर आपको ये शेर अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा, तो मासूम तितलियों को मसलने का शौक है। तौबा करो खुदा से डरो तुम नशे में। मासूम तितलियों को मसलने का शौक है, तौबा करो खुदा से डरो तुम नशे में हो। मुलाजा फरमाइए, अर्ज़ करता हूँ कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। अब यहाँ से मैं शायरी शुरू कर रहा हूँ, ये तो दूसरा काम था। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से, ज़रा सी धूप बिछा कर कयाम करता हूँ। मैं डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से, ज़रा सी धूप बिछा कर कयाम करता हूँ। मुझे खुदा ने गज़ल का दयार बख्शा है, ये सल्तनत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ। मुझे खुदा ने गज़ल का दयार बख्शा है, ये सल्तनत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। और बहुत शुक्रिया। और दो एक आध शेर और सुन लें। अर्ज़ किया है कि खूबसूरत हैं बहुत रास्ते, खो जाऊँगा अब मुझे नींद जहाँ आएगी सो जाऊँगा। अब इस तरह अच्छा शेर सुन रहे हैं वाकई, कि खूबसूरत हैं बहुत रास्ते, खो जाऊँगा अब मुझे नींद जहाँ आएगी सो जाऊँगा। और एक मुद्दत से इसी जिद में छुपा बैठा हूँ, चांद खुद लेने मुझे आएगा तो जाऊँगा। एक मुद्दत से इसी जिद में छुपा बैठा हूँ, चांद खुद लेने मुझे आएगा तो जाऊँगा। जब बरसना है तो सूरज की तरफ क्यों जाऊँ, इन मोहब्बत के पहाड़ों को भिगो जाऊंगा। जब बरसना है तो सूरज की तरफ क्यों जाऊं, इन मोहब्बत के पहाड़ों को भिगो जाऊंगा। धूप तलवों को मेरे चूमेगी, जाते जाते बदलियां भेज दे मैं ओढ़ के सो जाऊंगा।
1: पिछली बार आप उस्ताद हमारे इस तरह जाते नहीं हैं, आते हैं। आप लोग जरा अब शुरू होगा मुशायरा।
2: सब कुछ हो रहा है, चेक कर रहे हैं कि आप लोग जाग रहे हैं या
0: नहीं। नहीं नहीं नहीं,
2: जाग रहे हैं तो सबूत दीजिए उसका।
0: नहीं भाई, बहुत अच्छे। जी मैं पढ़ता हूँ एक आध शेर और पढ़ लूँ भी तरनू जो पढ़ लूँगा। बहुत अच्छा मुशारा हो रहा, तो जब मुशारा बुरा होता है तब मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो इतना अच्छा मुशारा हो रहा, सुने का मज़ा आ रहा, तो क्यों पढ़ने में बहुत ख़राब किया जाए। चलिए मैं एक आदमी से पढ़ता हूँ। अर्ज़ किया कि होंठों पे, इसके बाद बस, होंठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते, पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी। पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आँखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते।

पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आँखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। अर्ज किया है कि नाम उसी का नाम सवेरे शाम लिखा, शेर लिखा या ख़त उसको गुमनाम लिखा, शेर लिखा या ख़त उसको गुमनाम लिखा। शेर सुनिएगा कि उस दिन पहला फूल खिला जब पतझड़ ने पत्ती पत्ती जोड़ के तेरा नाम लिखा। नाम उसी का नाम सवेरे शाम लिखा, ख़त लिखा शेर लिखा या ख़त उसको गुमनाम लिखा। उस दिन पहला फूल खिला जब पतझड़ ने पत्ती पत्ती जोड़ के तेरा नाम लिखा। मीर कबीर बशीर इसी मकतब के हैं, मीर कबीर बशीर इसी मकतब के हैं, आ दिल के मकतब में अपना नाम लिखा। मीर कबीर बशीर इसी मकतब के हैं, आ दिल के मकतब। एक आशर और सुना के तरन्नुम से मैं पढ़ते देता हूँ कि होंठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, साहिल पे समंदर के ख़जाने नहीं आते। शेर सुनिएगा कि साहिल पे समंदर के ख़जाने नहीं आते, पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, पलकें भी चमक उठती हैं सोते में हमारी, आँखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते, आँखों को अभी ख्वाब छुपाने नहीं आते। बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल तरन्नुम से पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। एक शेर सुनाना है आपको, वो हिंदुस्तान में भी सुनाया था तो वहाँ खैरियत नहीं थी, ये बच ही गए तो वो, और वो मुशारे से तो मुशारे में तो खैर वहाँ क्या, वो गज़ल कुछ ऐसी है, उसमें शेर कुछ ऐसे हैं जो रिसाले में छपने चाहिए थे, और उसमें भी एहतियात बरत रहा हूँ कि पहला मिसरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बस सिर्फ मतला बता देता हूँ कि उसका ये है कि उससे मिलकर ज़िंदगी कुछ खूबसूरत सी लगी। तो उसमें एक दोस्त शेर सुन ले, शेर अर्ज़ किया कि फूल सी बच्ची ने मेरे हाथ से छीना गिलास। शेर साहब शेर सुनिएगा, फूल सी बच्ची ने मेरे हाथ से छीना गिलास, आज अम्मी की तरह वो पूरी और रस्सी लगी। फूल सी बच्ची ने मेरे हाथ से छीना गिलास, आज अम्मी की तरह वो पूरी और रस्सी लगी। आखिरी बेटी की शादी करके सोई रात भर, सुबह बच्चों की तरह वो खूबसूरत सी लगी। आखिरी बेटी की शादी करके सोई रात भर, सुबह बच्चों की तरह वो खूबसूरत सी लगी। ये खालिस हिंदुस्तानी शेर है मगर मैं आपको सुना देता हूँ कि रोटियाँ कच्ची पकीं, कपड़े बहुत गंदे धुले, मुझको पाकिस्तान की इसमें शरारत सी लगी। आपने तस्दीक कर दिया कि सही तस्वीर है मेरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अब मैं गज़ल सुनिए, बहुत शुक्रिया। वो महकती पलकों की ओट से कोई तार चमका धरा तुम्हें। सुनिएगा,

धरा तुम्हें मेरी बंद मुट्ठी न खोलिए, वही कोहिनूर है हाथ में।

बंद मुट्ठी न खोलिए।

रात दूँ, कभी एक रात आसमां का निजाम दे मेरे हाथ में, अभी शाम तक मेरे बाग में कहीं कोई फूल खिला न था। मुलाकात कीजिएगा, अभी शाम तक मेरे बाग में कहीं कोई फूल खिला न था, मुझे खुशबुओं में बसा गया तेरा प्यार एक ही रात में। तेरे साथ

कोई शाम खेल ही खेल में गई, रात बात ही बात में मेरी बन। अब शेर में दो खास इस गजल के सुनाने थे, मुलाहजा फरमाइए। अर्ज करता हूँ, कभी सात रंगों का फूल हूँ, कभी धूप हूँ कभी धूल हूँ। सुनिएगा शेर खास तौर पे नजर करना, मैं खुद भी जल्दी जल्दी पढ़ता जाता हूँ जहाँ शेर कमज़ोर हो, लेकिन जहाँ शेर ठीक होता तो फिर बेदार भी करता। कभी सात रंगों का फूल हूँ, कभी धूप हूँ कभी धूल हूँ, मैं तमाम कपड़े बदल चुका तेरे मौसमों की बारात में। कभी

के साथ आ, ये पड़ाव लगता है रात में, मेरी बंद मुट्ठी न खोली। बहुत नवाज। वो तरनू उसको तलाश करने के लिए उधर से आना पड़ेगा, तो उसको तलाश करने के लिए एक आध मिसरे उसी बहर में गुनगुना रहा हूँ। अच्छा, अब मैं बहुत कम पढ़ता हूँ तरनों से, मुलाजफा हुक्म की तामील कर रहा हूँ, मुलाज कीजिए। अच्छा, कहाँ सुओं की ये सौगात होगी, सुनिएगा।

की बहुत नवाजिश। बड़ी दूर तक रात ही शेर सुने का कि चरागों की लौ से सितारों की जौ तक

स्पोर्ट्स एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सोलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सोलिसिटर्स, लिस्टर हिल, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
7: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
14: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: तो हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उस अजीम, हर दिल अजीज और महबूब शायर, जिसे दुनिया डॉक्टर प्रोफेसर बशीर बद्र के नाम से जानती थी। आज 91 बरस की उम्र में طویل عرصے ڈیمنشیا کے مرض میں مبتلا رہنے کے بعد جناب ڈاکٹر بشیر بدر صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے. ادبی حلقہ اور ان کے شعر کے لاکھوں مت والوں کی آنکھیں آج اشک بار ہیں. ہماری بزم میں تشریف لائے ہیں مومنین قریشی صاحب, ادب کے بہت خوبصورت شیدائی. امروہہ سے آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ آہ جناب ڈاکٹر بشیر بدر بھی رخصت ہوئے. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم ہر دل عزیز اور محبوب شاعر حضرت پروفیسر ڈاکٹر بشیر بدر کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, مغفرت فرمائے, لواحقین کو اور ان کے کروڑوں چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. شکیل صاحب ہمارے بڑے خوبصورت لسنر اور کالر ہیں, آپ برنلے سے تشریف لاتے ہیں اور بے انتہا افسردہ ہیں اس عظیم ستارے کے جہان فانی سے رخصت ہونے پر, اور انہیں خراج عقیدت کے طور پر ایک غزل ان کی پیش کرنا چاہتے ہیں. میں نے انتخاب کیا ہے اس غزل کا, اور یہ غزل ہے استاد احمد حسین, استاد محمد حسین کی خوبصورت آواز میں. یہ خراج عقیدت ہے شکیل صاحب کا اس عظیم شاعر پروفیسر ڈاکٹر بشیر بدر کے حضور.

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गज़ल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। डॉक्टर साहब इस जहान फ़ानी से कूच कर गए और तमाम सामईन और नाज़रीन जो है वो इस गम में अश्कबार हैं, और सबका कहना यह है कि ये शायरी का एक अहद तमाम हुआ। मोमिनीन कुरैशी साहब अश्कबार आंखों के साथ डॉक्टर साहब का जिक्र करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर साहब को बारहा सुनने का मौका मिला और उनके अशार ऐसा लगता था कि मेरे दिल में उतर जाते थे। मैं खराज अकीदत के तौर पर उनकी एक गज़ल पेश करना चाहता हूँ आपकी महफिल में, यानी आप सुनना चाहते हैं उनकी गज़ल सर आँखों पर, लेकिन क्योंकि अब वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का मोमिनीन कुरैशी साहब, तो इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद आपका खराज अकीदत डॉक्टर साहब की गज़ल हम तमाम सुनने वालों तक पहुँचाएँगे और हम उन्हें खराज अकीदत पेश करेंगे।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio.
0: 1413 AM and online.
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
3: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
2: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबी रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
3: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
2: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
3: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड BD88NG। फोन
4: 01274-472-577।
3: दुबई ज्वेलर्स।
5: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
2: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
6: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिगम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाल मीट, चिकन, आटा दाल चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
2: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मेनिगम सुपर स्टोर। मेनिगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD88AX। फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश।
6: मेनिगम सुपर स्टोर।
7: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
3: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88DR। टेलीफोन 07885-428-349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
3: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
3: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548-419-678।
3: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: Bradford Asian Radio, मीडियम वेव 1413 AM, Bradford Asian Radio.

कलाम भी सुनती हैं और आज उन्होंने बेइंतहा अफसोस का इजहार किया है और उनका कहना यह है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बशीर बद्र के दुनिया से रुख्सत होने से एक अहद शायरी का तमाम हुआ और उन्होंने हजरत प्रोफेसर डॉक्टर बशीर बद्र का ये कलाम तमाम उनके शहदाइयों के नाम किया है कि भूला बिसरा ख्वाब हुए हम, भूला बिसरा ख्वाब हुए हम, कुछ ऐसे नायाब हुए हम, दरिया बनकर सूख गए थे कचरे से सैराब हुए हम, जाने किस मंजर से गुजरे पल भर में बर्फाब हुए हम, खुद अपनी ही गहराई में आखिर को गरकाब हुए हम, ख्वाबों की ताबीर भी देखें इतने कब खुश ख्वाब हुए हम। और बेइंतहा खूबसूरत कलाम डॉक्टर साहब का। एक और गज़ल मैं देख लेता हूँ ज़रा, उनकी जो भेजी है डॉक्टर साहब ने।

बक्सा मैंने ढूंढ निकाली है, वो गजल आपने लिखी थी और मेरे निगाह से निकल गई। कि सरे राह कुछ भी कहा नहीं, कभी उसके घर भी गया नहीं, मैं जन्म जन्म से उसी का हूँ, उसे आज तक ये पता नहीं, उसे पाक नजरों से चूमना भी इबादतों में शुमार है, कोई फूल लाख करीब हो कभी मैंने उसको छुआ नहीं, ये खुदा की देन अजीब है कि इसी का नाम नसीब है। बहासिल गज़ल शेर है डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत इंतखाब है। ये खुदा की देन अजीब है कि इसी का नाम नसीब है, जिसे तूने चाहा वो मिल गया, जिसे मैंने चाहा मिला नहीं। और इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं, इसी शहर में कई साल से मेरे कुछ करीबी अजीज हैं, उन्हें मेरी कोई ख़बर नहीं, मुझे उनका कोई पता नहीं। वाह वाह, बहुत खूबसूरत खराज अकीदत था जनाब मोहतरम डॉक्टर बशीर बद्र के लिए। एक मरतबा फिर हम सब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं डॉक्टर साहब, कि अल्लाह ताला डॉक्टर प्रोफेसर बशीर बद्र के दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन और दुनिया के चार कोनों में फैले हुए करोड़ों चाहने वालों को भी अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। आपका खिराज अकीदत इस खूबसूरत गज़ल की सूरत में डॉक्टर प्रोफेसर बशीर बद्र मरहूम को।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD7 1HR, 01274 48 77।
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
4: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
5: बालियां अंगूठियां और हार,
4: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
4: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
4: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
4: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD9 5VR, 01274 491 442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
3: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
4: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
3: बस ट्रक फोकलिफ्ट
6: टैक्सी लाइसेंस,
3: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
4: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
4: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274 201 679।
3: UK। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
4: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
3: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
3: सोफी ज्वेलर्स, 1:1 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
9: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
10: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: You're listening to Bradford Asian Radio,
9: 1413 AM and online.
12: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। रियासत साहब अभी अहले खाना के हमराह बाहर गए थे, एक तशरीफ ला चुके हैं और कहते हैं कि अब हमारा तोहफा हमारी नज़र कर दें अपने महबूब फनकार खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुनना चाहता है जनाब रियासत साहब और उनके अहल खाना। और कहते हैं कि गर्मी ने बैजा बैजा करा दी है। साहब यही अहवाल यहाँ ब्रैडफोर्ड में भी है। हडर्सफील्ड में तो मैं समझ रहा था कि निस्बतन आप खुली फ़जा में हैं, बेहतर हाल होगा, लेकिन आपके कहने के मुताबिक गर्मी वहाँ भी इसी तरह शदीद है जैसी हमारे ब्रैडफोर्ड में है। और इस स्टूडियो की तो बात ही ना कीजिए, ऐसा लगता है गर्मी से इसकी बहुत दोस्ती है। रियासत साहब, अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हमेशा यूं ही अपने हिज़्ज़ोमान में रखे। आपका तोहफ़ा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए। आपके महबूब फनकार खां साहब मेहदी हसन खां साहब की हसीन सहरंगेज़ आवाज़ में आमद का बहुत बहुत शुक्रिया भाई।

और दोस्तों अभी अभी हमारे बज़्म में शामिल हुए हैं भगत सिंह साहब, आप लीच से हमारे हमराह मौजूद हैं और कहते हैं कि मैंने किसी से मुलाकात की और उनके यहाँ एक गज़ल सुनी थी, अगर आपको ये गज़ल का पता हो। मियाँ ये बड़ी मशहूर गज़ल है और सिंगर इसके जो हैं उनका नाम है सलमान अलवी, और कहते हैं कि रिफत भाई अगर मुमकिन हो तो ये गज़ल हमें सुना दें, क्यों नहीं सर आँखों पर। ये बहुत खूबसूरत गज़ल सिंगर हैं, नाम सलमान अलवी है और जितनी भी गज़लें इन्होंने गाई हैं वो बे इंतहा मकबूल हुई। हम आपकी पसंद का एहतराम करते हुए आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं और कहते हैं कि मैं अपने तमाम आपके जो लिसनर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनको ईद की ढेरों मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। भगत सिंह साहब, आपका मोहब्बत भरा तोहफ़ा हमने तमाम सामीनों नाज़रीन तक पहुँचा दिया है और जिस वक्त आप से बात हो रही थी गज़ल मैंने निकाल ली थी और अब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, कबूल कीजिए। आमद का बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपके तमाम घर वालों को भी, हमारी तरफ से भी ईद की ढेरों मुबारकबाद।

0: जी भगत सिंह साहब, ये थी वो गज़ल जो आपने कहीं सुनी थी। अब हम खुश आमदीद कहते हैं, डंकास्टर सिटी से सिराज मुनीर साहब तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने मोहब्बत भरा सलाम और ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद तमाम सामईन और नाज़रीन तक पहुंचाई है। मैं एक मरतबा फिर अपने तमाम सुनने वालों से मुल्तमिस हूं कि मेरे बहुत ही प्यारे से और बहुत ही कम उम्र लिसनर जनाब अशमल मियां की तबीयत बहुत नासाज है। पहले उन्हें एक हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर दूसरे हॉस्पिटल ले जाया गया है और मुझे लगता है जैसी कैफियत हमारे मुअम्मर तरीन बुज़ुर्ग अलहाज शबी अहमद साहब बता रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में भी शदीद गर्मी पड़ रही है, मुझे लगता है हीट स्ट्रोक कहलाता है ये, वो उन्हें हुआ है। बहरहाल इंशाल्लाह अगर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और ग्लूकोज़ वग़ैरह उन्हें चढ़ाया जा रहा है, पहले कुछ दिया गया था, कुछ हज़म नहीं हो रहा और उल्टी हो रही है उन्हें, तो ये अल्लाह मियां ने चाहा और हम सब की दुआएं उसके साथ हैं, तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाएगा। यहाँ पे भी जो इस वक्त हमारे सुनने वाले हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि बच्चों का खुसूसी ख्याल रखें। अल्लाह ताला अशमल मियां को सेहत कामला और सेहत आजला नसीब फरमाए। और अब चलते हैं उस तोहफे की जानिब जो हमें डंकास्टर में जनाब सिराज मुनीर साहब की नज़र करना है। अहले डंकास्टर को मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। आमद का बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके अहले खाना को हमारी जानिब से भी ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद।
1: धोखा खाने को दिल करता है जिसको देख के मेरा यूं

ये दोस्तों कुछ मिक्सिंग हो रही है हमारे माइक से, और ये जो गीत मैंने लगाया है ये मिक्स हो गया है। मैं देखता हूँ, मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, क्या वजह है।

दोस्तों, इसके बाद आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को अब गज़ल उसने छेड़ी से इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल जुमतुल मुबारक की मुनासबत से खुसूसी महफिल रोशनी की सजाएंगे, जिसमें दुनिया के चार कोनों से उशाकाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाकर कल के खूबसूरत दिन जुमतुल मुबारक सैयदुल अयाम की खैर बरकात समेटते हैं। उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को भी इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह हाफिज़ो नासिर। अपना ख्याल रखिएगा, गर्मी बहुत शदीद है। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं। सब बखैर।

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
5: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
5: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1301

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274-48777।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
7: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274-491-442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
0: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
9: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मनिंगम सुपर स्टोर। मनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मनिंगम सुपर स्टोर।
0: मनिंगम सुपर स्टोर,
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
13: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवत लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
4: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

बेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सोलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज, गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सोलिसिटर्स, लिस्टर हिल, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274 499।
10: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 Wetley Hill, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 0788542839। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा असर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

बेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD7 1HR, 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD9 5VR, 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ओकलेन, BD9 4QU, 01274 056 014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
13: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
14: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
13: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
16: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
15: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
16: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
17: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
18: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
19: Listen on your PC or laptop. the best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवत लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार, 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

रेडफोर्ट एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid ul Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hills Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पुर असर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
15: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
16: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
17: You're listening to Bradford Asian Radio,
15: 1413 AM and online.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवत लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार, 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
5: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
5: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7, 414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: तो एक और काम करोगी, प्लीज?
3: क्या करूं?

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 488 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274 491।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवत लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मोहित रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम मैं मोहित रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी, चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 488 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274 491।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकवत लेन, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप काउंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR 01274 488 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
11: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
10: सोफी ज्वेलर्स?
11: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
10: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
12: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
16: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
17: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
18: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: Thank you.
1: नेहा, कल जो गलती की उसे दोहराऊंगा नहीं। आज फूल और खत दोनों तुम्हारे हाथ में हैं। जो बात कल मेरा फूल नहीं कह पाया वो आज ये खत कहेगा। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो नेहा। अगर तुमने फूल रख लिया तो मैं समझ लूंगा कि मैं भी तुम्हें
0: किसने दिया

0: बिरजू जी, जानकर खुशी हुई कि हम आपको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन हमें सिर्फ वो लोग अच्छे लगते हैं जो चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और अपनी गलती मानने की हिम्मत रखते हैं सबके सामने। हम ये तो आपसे होगा नहीं, इसलिए ये फूल आप ही रख लें।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 Wetley Hill, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की जानिब से आप सभी को दिल की अथाह गहराइयों से मोहब्बतों और चाहतों के सच्चे जज्बों के साथ बहुत बहुत दिली ईद मुबारक।

0: मनिंगम सुपर स्टोर्स की जानिब से अपने सभी काबिल एहतराम कस्टमर्स को दिल की तमाम तर गहराइयों से ईद मुबारक। मनिंगम सुपर स्टोर्स, कॉलराइज रोड, ब्रैडफोर्ड।
1: मुबारक ईद मुबारक।
2: And the winner is
3: your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: This Eid al-Azha, I stay close to what matters with Remitly, like sending a little something towards Ammi's famous biryani, where there's always room for seconds. Remitly, one easy app to send money home. Remitly UK Limited is authorized and regulated by the FCA.
1: Mubarak Eid Mubarak.
6: खाइलाज ब्रेड और खाइलाज ब्राइडल की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। खाइलाज ब्रेड इन सिग्नेचर मॉल एंड खाइलाज ब्राइडल ऑन लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड। क्या आप कौंसिल या हाउसिंग एसोसिएशन के घर के किरायादार हैं और सेम नमी मोल्ड और हीटिंग के मसले से दो चार हैं और कहने के बावजूद भी मसला हल नहीं हो रहा, तो कूपर हॉल सॉलिसिटर्स मदद कर सकते हैं, जो ब्रैडफोर्ड के किरायादारों की तरफ से लैंडलॉर्ड्स को रिपेयरिंग करवाने पर मजबूर करते हैं और गैर महफूज गैर सेहतमंद घरों के मकीनों को नो विन नो फी की बुनियाद पर मुआवजा भी दिलवाते हैं। हाउसिंग एसोसिएशन के किरायादारों के हकूक के जामिन कूपर हॉल सॉलिसिटर्स, लिस्टर हिल्स, साइंस पार्क, कैंपस रोड, BD71HR, 01274 48 77।
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95VR, 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
10: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मैनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाल मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
10: मैनिंगम सुपर स्टोर,
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
13: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
14: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
15: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: पाकिस्तान ज्वेलर्स मामू काका की तरफ से तमाम सुनने वालों को दिली ईद मुबारक। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD9 5ER।
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पुर असर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
0: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
0: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
0: 30 Wetley Hill, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबे रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 4283 49, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 13।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिसनिंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
9: यू आर लिसनिंग टू
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.